हुण कीर्तन गा रहे हो तो सुन रहे हो, अज जाना जो तुम घर च ना रहमत वेखना, यो रहमत थोड़िया थोड़िया कट्ठिया होके बड़ा सुख दिंदियां ने, बड़ी कृपा दी खुशियां मिलदियां ने इन्हां रहमतां तों। भोरा भोरा रहमत कट्ठी की जाती, भोरा भोरा पानी तिल तिल तिल तिल कर करके एडे एडे वड्डे भाग हो जांदे ने, वड्डे भागी बंदा बन जांदा, बूंद बूंद ना समुंदर।

कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। जी हाँ, आज स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड एक गेस्ट मेरे साथ जुड़ रही है। तो चलिए मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता। मेरे साथ जुड़ रही है मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2017 का खिताब आपको मिला है और इम्प्रेस यूनिवर्स 2018 और उसके बाद 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब आपको मिला है और आप पेशे से डॉक्टर चेतना अग्रवाल नाम है मैम का। और तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर।
0: कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं स्टूडियो में आकर?
1: ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच शारदा यूनिवर्सिटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा अनुभव रह रहा है ये और बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल।
0: मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे शुरुआत रही पेशे से? आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एनेस्थियोलॉजिस्ट, करेक्ट बोला मैंने आपके आई थिंक, और उसके बाद ये फील्ड, इन दोनों को किस तरीके से आपने बैलेंस करके रखा है?
1: देखिए, ताज हमने, हर लड़की का शौक होता है कि उसके सर पे एक ताज सजे
0: जी,
1: और मेरा भी ऐसा ही ख्वाब था। हम लोग जब भी टीवी पर मिस वर्ल्ड मिसेस वर्ल्ड देखते थे, मिस यूनिवर्स मिसेस यूनिवर्स देखते थे, तो अपना भी मन करता था कि कभी कभी ऐसा मौका मिले कि ये ताज हमारे सर पर भी चमके। तो यही एक ख्वाहिश थी, यही एक तमन्ना थी, लेकिन शुरू में ये नसीब नहीं हुआ। पर हाँ, जब मौका मिला तो मौका हमने हाथ से जाने नहीं दिया। और जैसे ही पहला मौका मिला 2017 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017 जो कि उदयपुर में हुआ था राजस्थान में, तो वहां पर मुझे मिसेस गुजरात का टाइटल मिला था एंड मिसेस इंटेलिजेंट का सब टाइटल मिला था
0: जी।
1: फिर बात करते हैं 2018 की, तो एम्प्रेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं सिटी एम्प्रेस, स्टेट एम्प्रेस रही थी, कंट्री फाइनलिस्ट रही थी और वुमेन ऑफ ऑनर अवार्ड भी मुझे मिला गया था गोवा में। और फिर 2019 में मिसेस यूनिवर्स, जो मिसेस कैटेगरी में सबसे ऊंचा
0: खिताब
1: है, बोलते हैं, वो हुआ था चाइना में ग्वांगजू में
0: जी।
1: तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एज मिसेस यूनिवर्स मिडिल एशिया 2019 और वहां पे मिसेस काइंडनेस का सबटाइटल भी मिला था।
0: ग्रेट ग्रेट। घर से कितना आपको सपोर्ट मिला?
1: घर से पूरा सपोर्ट मिला है इसमें।
0: अच्छा
1: yes.
0: तो ये जो शुरुआत रही है, यूं कहें कि बचपन से आपके दिल दिमाग में रहा है कि मुझे भी इस फील्ड में आना है, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है।
1: फैशन शोज में पार्टिसिपेट किया है तो वो कहीं ना कहीं अंदर था।
0: ओके ग्रेट ग्रेट। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड डॉक्टर चेतना अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, जो कि इनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी और भी कुछ खास आना बाकी है, आप कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरी यानी गगन के साथ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चेतना अग्रवाल हैं, साथ ही साथ कई खिताब इनके नाम है, जैसे कि 2017 में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है, 2018 में एम्प्रेस यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है और वहीं 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब भी आपके सर है, सर माथे है। ये जो ख्वाब आपने देखा बचपन का ही ख्वाब था या जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका ख्वाब परवान चढ़ता गया?
1: बचपन से ही ख्वाहिश थी लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ती गई ये ख्वाहिश, पर मिस कैटेगरी में कभी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला तो मिसेस कैटेगरी में मैंने अपना ये सपना सच किया।
0: ओह ग्रेट ग्रेट, उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी डॉक्टर?
1: मेहनत इसमें काफी रहती है, लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं स्टेज पे आके बस हम ताज जीत लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारी पूरी ग्रूमिंग होती है, हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, हमको हमारे बात करने का तरीका सीखना पड़ता है, हम कैसे वॉक करते हैं, हमारी रैंप वॉक ट्रेनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर राउंड्स की ट्रेनिंग होती है, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने उसकी भी ट्रेनिंग होती है, तो काफी ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारा टैलेंट राउंड होता है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, चाहे हमको डांस करना है या कोई भी हमको प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी तैयारी होती है, तो काफी इसमें जाता
0: मेहनत है,
1: बहुत मेहनत लगती है। और हमको एक प्रेजेंटेशन भी करना होता है, जैसे मिसेस यूनिवर्स 2019 में डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने एक प्रेजेंटेशन किया था जिसमें मैंने डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स के जरिए अपना पूरा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो इसमें काफी हमको तैयारी करनी पड़ती है।
0: जी जी जी, ये जो तैयारी है ये तैयारी कौन कराता है? आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ती है या आप जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ की टीम आपको तैयार करती है?
1: कंपटीशन की टीम भी हमको तैयार करती है। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं हमारे वहाँ पे, पर कॉम्पिटिशन में जाने से पहले, पेजेंट में जाने से पहले हमको खुद की तैयारी करनी पड़ती है टू बी प्रेजेंटेबल इन दी कॉम्पिटिशन।
0: ग्रेट, सॉरी प्लीज कंटिन्यू करिए।
1: तो हमारे जो भी हम ट्रेनर्स यहाँ पे लेते हैं, ग्रूमर्स होते हैं हमारे, तो उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्लस अगर जो हमारे टैलेंट राउंड का जैसे मैंने बात की थी तो उसके लिए भी हम तैयारी करके ही जाते हैं यहाँ से।
0: ओह ग्रेट,
1: प्लस हमारे डिजाइनर्स होते हैं जो हमें ड्रेसेस डिजाइन करते हैं।
0: ओके, डॉक्टर जहन में ये भी सवाल आता है कि मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसे इलाके से आ रहा या आ रही है, अपने सपने को साकार करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में एक ये बात भी आ जाती है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, एक बात होती ही होती है, तो इस मामले में या यू कहें खुलकर आप बताएं कि वो अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है, वो कैसे आपकी तरह कोई मिस इंडिया बन सकता है या मिस इंडिया का जो खिताब है उसके सर माथे जा सकता है?
1: ये अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल के जो पेजेंट्स हैं वो बहुत ओपन अप हो गए हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात कर सके तो आपको खिताब मिलेगा। आप अपनी लैंग्वेज, मातृभाषा जो भी है आपकी, उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड दे सकते हैं, वो आपके सब जवाबों को एक्सेप्ट करेंगे। और ट्रांसलेटर्स भी होते हैं जो आपकी भाषा को इंग्लिश में या हिंदी में जो ज्यूरी समझ सके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें बोल सकते हैं। और दूसरा है कि ट्रेनिंग तो हम सबको लेके ही जानी पड़ती है।
0: जी जी,
1: और वहाँ पे भी वो हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं।
0: क्या कोई रुपए पैसे की अगर हम बात करें तो क्या कोई रुपया पैसा भी आगे चल के खर्च करना पड़ता है?
1: हाँ जी, इसमें रुपया पैसा तो खर्च करना पड़ता है क्योंकि आपकी ड्रेसेस होती हैं, आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, आप जब पेजेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, तो हमको पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है लकी, पर हाँ इसमें थोड़ा खर्चा तो रहता ही है। आपकी तैयारी होनी चाहिए।
0: क्या बात है, यानी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाकर रखिए, चाहे वो वॉकिंग की बात हो, टॉकिंग की बात हो, और जिस तरीके से डॉक्टर चेतना अग्रवाल हमें बता रही हैं कि इन इन

0: बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे खास बात यह कि इन्होंने एक सपना देखा और सपने को इन्होंने साकार किया। अब वो चाहे वो मिसेज यूनिवर्स का खिताब क्यों ना हो, लेकिन वो खिताब बचपन से दिल दिमाग में कहीं घूम रहा था कि ये सपने को मुझे साकार करना है। कहते ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आप पेशे से एनेस्थियोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं कि बेहोश करने वाली डॉक्टर है। आप इतनी खूब तो रहते हैं कि अभी भी हम बेहोश हो ही रहे बिना इंजेक्शन के दवा के। तो इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा जरूर, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ?
1: ए दिल है मुश्किल।
0: क्या बात है, सो ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।
2: सफ

0: ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत डॉक्टर जुड़ी हुई है और क्या कहूं मैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर आपसे बात हो रही थी कि आप बेहोशी की डॉक्टर हैं। आपको देख के तो मुझे लगता है कि मरीज वैसे ही बेहोश हो जाते होंगे। ये मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है।
1: थैंक यू।
0: ये जो डॉक्टरी का फील्ड है आपका और आप इस फील्ड में भी काम कर ही रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है किस तरीके से आप इसका तालमेल बैठा पाते हैं?
1: बैलेंस करना, यस इट इज थोड़ा मुश्किल चीज होती है हमारे लिए, लेकिन जब दिल में एक ख्वाब होता है, कुछ पाने की तमन्ना होती है, तो अपने आप हम आपस में टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको परिवार को भी देखना होता है, हमको बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन को भी देखना होता है और अपने ख्वाबों को भी सच करना होता है।
0: एक्सीलेंट।
1: तो सब कहीं ना कहीं जैसे भी होता है हम टाइम सेट करके सब मैनेज करते रहते हैं।
0: वेरी गुड। यानी कि कहीं ना कहीं लिसनर्स अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो राहें वो खुद ब खुद बनती चली जाती हैं, बस एक बार छोटा सा कोशिश करिए, प्रयास करिए और जो आप चाह रहे हैं वो होता चला जाएगा। आप कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने फाइट भी किया, जैसे कि आप उसके
1: आपने जो ये बोला उसके बारे में मैं एक बोल
0: प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज
1: मेरा एक मोटो जो हम बोलते हैं हाँ। वो ये है इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू। यानी जब आपको मिले मौका तो आप उसी समय अपनी मंजिल के रास्ते पर चल सकते हैं।
0: क्या बात है, इस बात को यूं कह सकते हैं जब भी मिले मौका मार दो चौका। बहुत खूब बहुत खूब। और आम भाषा में डॉक्टर कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये जरूरी है कि ख्वाबों को जिंदा रखना जरूरी है, उनको मरने मत दीजिए। आप एक जीता जागता उदाहरण है समाज के लिए, युवाओं के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल आपको मिल ही जाएगी। कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था उसके आप विनर भी रही हैं। एज ए जूरी जब आप जाती हैं तो क्या क्या खूबी आप जो पार्टिसिपेंट वहां पर हैं क्या देखती हैं?
1: ज्यूरी बन के भी जाने का मौका मुझे मिला है कई पैटर्न्स में, तो वहाँ पे हम सबको बेसिकली उनकी पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं राधर देन की फिजिकल ब्यूटी या वो बोल कैसे रहे हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, उनका टैलेंट राउंड कैसा है, उन्होंने इंटरव्यू कैसा दिया है, ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस में वो कैसे रहे हमारे साथ, कितना अच्छा उन्होंने सहकार दिया, कितना अच्छा ट्रेन किया अपने आप को, तो सब कुछ हम इकट्ठा देख के ही हम पार्टिसिपेंट्स को जज करते हैं।
0: वेरी गुड। मुझे लगता है कि इस बात से जो हमारे लिसनर हैं, इन बातों को सुनना या समझना उनके लिए बहुत जरूरी है। फाइनली एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिस पर्पज से आप यहाँ आई हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस कैंपस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और फाइनली एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे यूथ को?
1: मैं ला ग्लोबल फाउंडेशन की ऑनर्ड एम्बेसडर रही हूँ 2020 से, जब ये कोविड हुआ था, शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले ही मैं इनकी ऑनर्ड एम्बेसडर बनी हूँ। और मुझे कहकर बेहद खुशी हो रही है कि जो मतलब कोविड टाइम्स में भी जब हम सोचते थे कुछ नहीं हो सकता है, तब भी ला ग्लोबल फाउंडेशन ने इतनी सारी ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स की हैं, जो यूएन के रिलेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेशन में होती हैं एंड काफी आगे तक इस फाउंडेशन को लेके गए हैं और इंटरनेशनल स्पीकर्स उनके पास आए हैं जिसके साथ में हम मीटिंग करते थे ऑनलाइन और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये थ्रू आउट। और उनके साथ हमने ब्रेस्ट अवेयरनेस का यहाँ पे एक पेजेंट किया था, क्राउन ग्लोबल पेजेंट अवार्ड्स किए थे अभी दिल्ली में, तो उसमें भी एज अ ग्रूमर मैं आई थी, एज रैंप वॉक कोरियोग्राफर भी आई थी, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सफर रहा है उनके साथ। और मैं इंडियन रिसोसिटेशन काउंसिल की जो ISA हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और हमारे मैं अपनी सिटी की सेक्रेटरी हूँ ISA वडोदरा। और हमारे जो नेशनल फोरम्स हैं ISA आर्ट एंड लिटरेचर क्लब, ISA कल्चरल क्लब एंड ISA विजिल, उसकी भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ।
0: ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक छोटा सा संदेश हमारे यूथ के लिए, हमारे उन गर्ल्स के लिए जो आपकी तरह इस खिताब को जीतना चाहती हैं, मिस यूनिवर्स का, मिसेज यूनिवर्स का या मिस इंडिया का?
1: जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखिए, चाहे जिंदगी आपको किसी भी मोड़ पे लेके जाए, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, लेकिन अपने ख्वाबों को प्लीज बुझने मत दें, उनको हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि कब आपको मौका मिलेगा उन ख्वाबों को सच करने का ये आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन ख्वाब सच जरूर होते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं, इसलिए आप भी देखेंगे जरूर जिंदगी में कभी ना कभी, डेफिनेटली।
0: चलिए, मैं भी ख्वाब देखता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मेरे भी जो ख्वाब हैं, जो सपना है, वो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन जरूर साकार होगा। सो डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आपसे बात करके, आपसे मिलकर मुझे वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत एनर्जी मिली है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि वो सपना जरूर साकार होगा, आपकी बातों से मुझे भी अपने आप में ऐसे लगने लगा है। सो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत सारा समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद आपका भी। एंड शारदा यूनिवर्सिटी के लिए मैं कहूंगी कि मैंने बहुत पहले से मैं टीवी और न्यूज़पेपर में इनके एड्स देखती थी, और आज पहली बार जिंदगी में मौका मिला है इस यूनिवर्सिटी में आने का, और इतना बड़ा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सब बहुत सपोर्टिव है, ओवरऑल टीम सपोर्ट बहुत ही अच्छा है।
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा अच्छा। मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस,
1: इतना कंफर्टेबल फील करके करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये होना बहुत जरूरी है ताकि हम जो बातें हैं वो खुलकर बात कर पाए।
1: बिल्कुल।
0: और आप जब जज होती हैं तो मैं समझता हूँ जो प्रतिभागी आपके सामने, अगर वो माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक नया बंदा या बंदी है वो डर जाएगा, घबरा जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर, आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।
0: सो सुनते, थैंक यू मैम। ये प्रोग्राम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। एक्शन।

0: जो कहते हैं सच ये भी कहते हैं कि जान है तो जहान है ना। और जब जान की बात आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जब हेल्थ का जिक्र होता है तो सच बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर की याद आती है कि डॉक्टर हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर हमें गाइड करेंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हेल्थ के संबंध में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और जब आपको पता चले कि डॉक्टर वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, और साइड बाय साइड वो अपना एक जो प्रोफेशन है उसको भी कैरी कर रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग की बात हो या लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, यूं कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पैकेज है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची वी रायजादा। सो डॉक्टर प्राची, आपका सुरुशाधा 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: अभी दो और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत रही, बहुत अच्छी रही। आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस फाउंडेशन के, बहुत खुश मिजाज लोग हैं आप, और आपके चेहरे पर मुस्कान है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो ये जो मुस्कान का राज क्या है, किस तरीके से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं

0: उसके बाद मैं अपने बेसिकली मेरा प्रोफेशन एचआर प्रोफेशन से हूँ मैं सिंस लास्ट 15 इयर्स, और इसके अलावा यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीजन था क्योंकि मेरे को लगता था जब तक फिट नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिकली मैंने जो चीज अपने कॉर्पोरेट में नोटिस किया है वो ये है कि इतना प्रेशर है प्राइवेट जॉब्स में, इतना प्रेशर है, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सके। अगर हम इसको बैलेंस करके चलते हैं तो जो स्माइल की बात आप कर रहे हैं वो आराम से हो सकती है। सो मैंने उसके लिए टाइम निकाला, मैं मॉर्निंग 4 o'clock उठती हूँ डेली, मेडिटेशन
1: अक्षय कुमार को फॉलो करती हूँ, ग्रेट गुड जॉब डॉक्टर जी,
0: और मेडिटेशन करती हूँ डेली, और उसके बाद मैं रनिंग और साइकिलिंग के लिए अपने टाइम निकालती हूँ।
1: अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि आपने सुबह की बात बता दी कि पॉप फटने से पहले आप जग जाते हैं लेकिन आप सोते कितने बजे?
0: सर मैं 9:30 अपने बेड पे चली जाती हूँ। जी जी जी, और मैंने अपनी बेटी को भी इतना ही डिसिप्लिन रखा है, लोग कहते हैं बच्चों के साथ हम सो नहीं पाते वो जागते रहते हैं, बट नहीं, शी इज वेरी डिसिप्लिन, वो भी हमारे साथ सो जाती है।
1: माँ पर नहीं है
0: सर, अगर ऐसा नहीं करे तो मॉर्निंग 4 o'clock नहीं हो पाता।
1: डॉक्टर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारे बड़े बुजुर्गों का सिद्धांत रहा है कि समय से सोना समय से उठना, यही वजह है कि उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती थी। मैंने खुद से ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि अगर आप नींद खो रहे हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून आप खो रहे हैं। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अपने आप को बैलेंस किया है कि 9 बजे आप सो जाते हैं और 4 बजे खटिया छोड़ देते हैं, खटिया नहीं होगा सॉरी, बैग छोड़ देते हैं आप तो
0: जी हाँ।
1: तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग लेट आवर्स में सोते हैं या जल्दी जग जाते हैं, नींद कम लेते हैं?
0: सर ये करने का रीजन ही एक है, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि कॉर्पोरेट में मैं देख रही हूँ इतना प्रेशर है लोगों से नहीं हो पाता है। एक टाइम था मैंने भी ये सारी चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी थी कि 1-1 बजे तक हम ऑफिस का काम लेके रात को बैठे हैं, मॉर्निंग में नहीं हो पाता था। बट मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे अगर हम फोकस्ड हैं, हमारा मेंटल लेवल स्टेबल है, तो हम सब चीजें कर सकते हैं। रात को ये जागना और स्पेसिफिक मोबाइल के साथ ये सब चीजों से अगर वो दूर रहेंगे और अपनी खुशी और हेल्थ दोनों मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, तो ये करना चाहिए एक बार वो प्रैक्टिस करके। क्योंकि हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, उनको भी बोलते हैं कि अगर आप लोग हमें ऑनलाइन दिखते हैं इतने बजे के बाद तो आपको वो पनिशमेंट मिलेगी नेक्स्ट डे, तो हम उनको भी कोशिश करते हैं कि वो मोटिवेटेड रहे उस फील्ड में।
1: यानी कि आपकी खूबसूरती का जो राज है वो टाइम से सोना, टाइम से खाना, अपने आप को बैलेंस डाइट जो आप लेते हैं जिसकी वजह से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। क्या कहना चाहते हैं जो नींद कम लेते हैं, जो दिक्कत परेशानी में घिरे हुए हैं, जो अवसाद से ग्रसित है, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर रखें, किस तरीके से जिंदगी को वो खुशनुमा बनाकर रखें, एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से उनके लिए?
0: सर मुझे यही लगता है कि उनको जितना वो परेशान है, परेशानियों के बारे में सोच सोच के नेगेटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एटलीस्ट उनको 21 डेज, एक सिंपल ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर मैं बहुत कभी परेशान होती हूँ, मैं सारी नेगेटिव थॉट्स राइट करती हूँ एक नोटबुक पे, फिर उसको फाड़ देती हूँ और बर्न कर देती हूँ बस, और उसको डस्टबिन में ले जाकर फेंक देती हूँ। और आपको भी आप फील करेंगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं। मेडिटेशन का रोल तो एक अलग होता ही, आप पॉजिटिव रहते हैं, बट ये करने से नेगेटिविटी जो उस टाइम पे जो आपको खाई जा रही है वो आपकी थॉट निकल गई आपके माइंड से, तो आप नेक्स्ट पल कुछ और अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो करके देखिए। गाना गाना है, डांस करना है, कुछ भी कर सकते हैं।
1: डॉक्टर प्राची, जब गाने का जिक्र हो ही गया है तो बातों बातों में कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, जब आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, ये गाना गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को भी सुनाना चाहती हूँ?
0: सर स्ट्रेस तो टच वुड नहीं है मेरी लाइफ में, बट फिर भी अगर कभी अगर किसी को परेशानी है तो सिर्फ 2 लाइन्स
1: जी प्लीज।
0: ये

0: दा बड़ा है।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और लिसनर्स, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर प्राची आपसे बात कर रही हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। जिंदगी वाकई बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। और अक्सर मैं भी खुद लाइनों को यहाँ जिक्र करता रहता हूँ कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। डॉक्टर, अदरवाइज तो लोग ऐसे होते हैं कि टेंशन लेने का नहीं देने का। मेरा खुद का मानना ये कि ना आपको टेंशन लीजिए ना किसी को दीजिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाकर रखिए और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहिए। और आके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई है, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, और इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई होप जब भी आपसे मुलाकात होगी, इधर कैंपस में आना होगा, तो जरूर आप हमारे रेडियो आएगा, जरूर हम आपसे फिर बात करेंगे।
0: थैंक यू सो मच सर इतनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू।
1: सो लिसनर्स, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर।

ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार से मोहब्बत से गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। टाटा बाय एंड टेक केयर।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। She likes to drop it low, man.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी

0: You're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है. तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
0: The world is here.
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में. सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम. भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक.
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर. तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.
4: अरे भैया रामू.
5: हाँ भैया श्यामू.
4: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
5: अरे भैया श्यामू हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है.
4: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है.
5: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल.
4: तो अभी चलो.
6: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा. छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए. मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च. अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें.
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

राम राम दो सलाम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से खुदा से पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे मंगलमय गुजरे कहीं को दिक्कत परेशानी न हो। वक्त का इशारा यानी कि वक्त हमसे कह रहा है कि इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 9:09 हो चुके हैं 29 तारीख है। हमारे आसपास के खास उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर आपको एक अच्छा सच्चा गुरु मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आपकी जो काया है वो पलट जाती है, आपकी जिंदगी में निखार आता चला जाता है, आप मैच्योर होते चले जाते हैं, आप जिंदगी में अपने सपने को साकार कर सकते हैं बशर्ते आपके पास एक अच्छा टीचर हो, मेंटोर हो, जिसको हम कहते हैं उस्ताद, हम कहते हैं टीचर, हम कहते हैं गुरु। जी हाँ, आज है गुरु पूर्णिमा और इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत दिली दुआएं बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने गुरु का आभार व्यक्त करिए, अपने गुरु से मुलाकात करिए, मीठा मुंह कराइए, पुष्प अर्पित करिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए। मतलब साष्टांग अलग है दंडवत अलग है। तो इस तरीके से आज मथुरा वृंदावन में अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर या यूं कहें कि मथुरा वृंदावन में तो है ही है, जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ पर बहुत धूम है, लेकिन पूरे विश्व में जो इस पर्व को अच्छी तरीके से मनाते हैं चारों ओर इस पर्व की धूम है। इस पर्व को आपको जानना चाहिए समझना चाहिए, इसका जो महत्व है उसकी बारीकियों को जब हम जानेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पर्सनैलिटी में जो कहते हैं ना व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी में निखार आता चला जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
3: 90.8 FM। अरे भैया रामू।
4: हाँ भैया श्यामू।
3: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
4: अरे भैया श्यामू हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
3: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
4: अच्छा तो भैया लेके चल, अब ही चल।
3: तो अब ही चलो।
5: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी,
0: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखेनी, ओकेरा के तुरंत साफ करेनी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओके रा के तुरंत साफ करी, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूं भी टायर नरी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहां है, सारी मुश्किलें आसान है। और यकीन मानिए, हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत सही तो लाभ कई। इस बारिश के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में अक्सर होता क्या है कि ऑन रोड हमें सीवर नजर नहीं आ रहा होता। ऑन रोड सीवर के ढक्कन कभी कभी खुले होते हैं और बारिश के मौसम में जल भराव की जब

जब कोई स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा है तो आगे उसे नजर नहीं आता कि रोड धसी है या नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि जो आपकी तय सीमा लिमिट है उससे थोड़ा कम चलिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। बारिश के मौसम में कैसा अपना ख्याल रखें, क्योंकि सच कहते हैं सेहत सही तो लाभ कई, इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी, जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।

0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

धीरे चलो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सच बात तो एक है, सेहत सही तो लाभ गई। और सच कहते हैं जो कहते हैं कि जान है तो जहान है। बारिश के मौसम में सुरक्षित चलिए, स्पीड का ध्यान रखिए, यानी कि थोड़ी कम रखिए स्पीड, क्योंकि आगे गड्ढा है क्या है कुछ नजर नहीं आता। बारिश के समय में बिजली के खंभों में करंट उतर जाता है, तो उससे भी अपने आप को बचाकर रखना है। बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं तो घटना दुर्घटना घट सकती है। जब आप ऑन रोड हैं तो सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है खान पान का। जब खान पान का मैं जिक्र करता हूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, एक्सपर्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीजिए, यानी कि पानी से होने बीमारियों से बचने के लिए हमेशा पानी उबाल कर या फिल्टर कर आप पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप ले सकते हैं, काढ़ा, हर्बल टी, अदरक वाली चाय या गर्मा गर्म सूप आप पी सकते हैं। बाहर के खाने से यानी कि अपने आप को बचा कर रखिएगा। स्ट्रीट फूड, चाट और पहले से कटे हुए फल बिल्कुल आप ना खाएं, इनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियों से आप परहेज करें, इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो ये कुछ खास बातें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और भी कुछ बातें हैं उसके बारे में जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बारिश के मौसम में ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं जल भराव की वजह से कहीं कोई गड्ढा है हमें नजर नहीं आता, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। अपनी गाड़ी की जो स्पीड तय है उसे थोड़ा रखिए। इसके अलावा घर से थोड़ा 5 से 10 मिनट पहले आप निकलें ताकि ऑफिस आप समय पर पहुंच पाए। बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और ऑन रोड अक्सर पेड़ गिर जाते हैं तो वहां पर कोई घटना दुर्घटना ना घटे, वहां से अपने आप को बचा कर निकालिएगा। और कुछ खास बातें जैसे कि घर की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि खान पान का ध्यान रखिएगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप खा सकते हैं और बाहर के खाने से परहेज करेगा। अब बात कर लेते हैं घर की देखभाल की, यानी कि होम केयर। मच्छरों को पनपने न दें, क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी और सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। घर के आसपास कूलर या गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से बचाव हो सके। सीलन और फंगस से अपने आप को बचा कर रखें। अलमारी और कपड़ों को सूखा रखने के लिए कपूर या सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल आप करें। वेंटिलेशन जरूरी है, जब बारिश थमे तो थोड़ी देर खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर की नमी और उमस कम हो सके। सफर आपका सुरक्षित रहे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका बदन गीला है, कपड़े गीले हैं तो तुरंत बदल लें। अगर आप बारिश में भीग कर आ रहे हैं तो तुरंत नहाकर सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी खांसी ना हो। रेन गियर साथ रखें, यानी घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी धीरे चलाएं, यानी सड़कों पर फिसलन और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए स्पीड कम रखें। और वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और मनोरंजन के लिए बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। एफएम यही कहता है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली रेडियो एफएम सुनो शारदा 90.8 एफएम, जो कि अपने ग्रेटर नोएडा का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमारी जो काया है उसको आप निरोग रखें, हम सब स्वस्थ रहें और ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब नमस्कार, मैं हूं गगन आपके साथ लेकर आपका अपना वही कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में दिल की हार्दिक गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस डर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है? क्या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी? हमारे साथ हैं इस चर्चा में टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। तो सुनीता जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमें हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में फिर से जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर भी फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात करी। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बेटियाँ आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आप इस बात को सही तरीके से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर एक चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: तो श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मधुर आवाज आपने सुनी, ये मधुर आवाज है, हमारे साथ है हमारी टीकन भाभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है? टीकन भाभी क्या कहती हैं आप?
2: मेरा सीधा जवाब है नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती है। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, जैसे मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पे डाल देना गलत है। विज्ञान यही कहता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वो साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
0: देखिए, इसीलिए हम टीकन भाभी को अपने इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि टीकन भाभी बड़ी अनुभवी हैं और तथ्यों पर आधारित बातों को आपके सामने लेकर आ रही है। तो दोस्तों, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है।

0: किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल मेरा सुनीता जी से है कि बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सबसे जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी वे माँ बनी हैं। एक गवाह तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधे चुनौती देता है।
1: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत न बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि ये सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घर तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुल के बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेजी पकड़ती है।
1: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है और माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
2: इसीलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं है, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं है, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: दोस्तों, ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं? इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों? बाद में ले लेंगे।
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये जो बाद में देखे वाली चीज है ना, वो होनी नहीं चाहिए। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। यह टीका स्वस्थ बच्ची को इसीलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम से कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: भाई, आगे का सवाल पूछने से पहले मैं आप दोनों की तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जो कि तथ्यों पर आधारित है। अनुभव के आधार पर हम बातें आप तक, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार आ जाए तो? टीकन देवी, क्या कहेंगे आप?
2: इंजेक्शन लगने के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन या हल्का बुखार, ये कई टीकों में होता रहता है, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: लेकिन भाभी, अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है सुनीता, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: बिल्कुल, बहुत सही बात दोस्तों टीकन भाभी ने कही है, और यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि तथ्यों पर आधारित बातें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक है कि HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य ये कहता है कि उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता। पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है दोस्तों। दूसरा मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य कहते हैं कि आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वो मां है। एक और मिथक की बात करते हैं, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य कहते हैं कि समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। अगला मिथक सामने आता है कि मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं है। भाई वैज्ञानिक कहते हैं, तथ्य कहते हैं कि मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है। सुनीता जी आप क्या कहते हैं?
1: जब आप ऐसे एक एक करके बात बताते हैं ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में तो सब गड़बड़ हो जाता है।
2: इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़े में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, मगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: तो उससे कहना कि क्योंकि कुछ बीमारी का बचाव पहले से किया जा सकता है, ये टीका तुम्हें भविष्य में होने वाली एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो ये पूछे कि क्या इससे मेरे पीरियड्स पे असर होगा, तो उसको बता देना कि नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता है। और अगर वो तुमसे ये पूछे कि क्या इससे आगे चलकर मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, तो उसको ये जरूर कहना कि ये सब झूठी अफवाहें हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही टीकन भाभी। दोस्तों ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
1: पर हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे से पूछा भी नहीं जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का एक कदम है, उसे अधिकार है ये पूछने का कि ये किस लिए है, ये भी सेहत शिक्षा का ही हिस्सा है।
0: भाई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन भाभी, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पे डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। पर वो बोली ठीक है अम्मा, अब हम साथ चलेंगे।
2: देखा सुनीता, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर एकदम से आधा हो जाता है।
1: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए, वहाँ तो पीरियड का नाम लेते ही लोग भौंय चढ़ा लेते हैं।
2: बस तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी, अफवाह उतनी ही कम चलेगी।
0: बिल्कुल। अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। दोस्तों, आधिकारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए। दोस्तों,
1: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। अब हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में तो कभी नहीं सोचा।
2: वही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं करती। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी शरीर की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है ना, उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा ऐसा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
0: वाकई बहुत अच्छी बातें सुनीता जी आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही। दोस्तों, यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूएन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं दोस्तों, पर सच टिकाऊ होता है।

0: और श्रोताओं, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है। जैसे कि सुनीता जी ने, टीकन जी ने अपने अनुभव के आधार पर एक बात रखी कि लड़कियों की आवाज को हम दबा देते हैं, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
2: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है कि ना पूछना ही सबसे बड़ी गलती है।
1: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हो तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: और टीकन भाभी, मैं तो यही कहूंगा कि उनको सुनना होगा सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जी बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है दोस्तों, जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
2: एक और बात मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और एक अनुभव के आधार पर दोस्तों, मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा। जब टीकन भाभी, सुनीता जी मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि पुरुषों को भी इस प्रकार की भागीदारी दर्ज करनी चाहिए। जब भी कोई समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर से मुलाकात करें दोस्तों। और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर इसकी रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
2: सही कहा। अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिरी में रखते हैं।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ में चलना चाहिए, तभी असली लाभ है। तभी सेहत सही, लाभ कई, सच में घर तक पहुँचेगा।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही ले। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। नंबर एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। नंबर दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। नंबर तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। नंबर चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। नंबर पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। नंबर छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सातवां नंबर, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं। क्यों सुनीता जी?
2: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी।
1: बस सुनीता, ऐसा ही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझा पाना भी है। अब हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत से ही
0: तो लाभ कई। तो श्रोताओं, ये विशेष कार्यक्रम उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। टीकन भाभी का, सुनीता जी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप निश्चित तौर पर लाभ उठाएंगे। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। सब खुश रहें, निरोग रहें। ऐसी विशेष कार्यक्रम को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
4: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है। एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म लें, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8 FM@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM. Suno Sharda
5: 90.8 FM. भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जा...

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University. Solo Sharda.
4: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
6: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
7: शारदा। नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
8: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
9: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
8: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
10: हाँ माँ जी।
11: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
12: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

प्रेमी सजनों, अगर गरीबी न देखी हो तो आज देख लो, और इन गरीबों की बदनसीबी न देखी हो तो आज देख लो। मेहरबानों, बेहाल हो जाते हैं

0: इसमें एक तो इसके सास और ससुर और इसकी ननद और इसका खास होने वाला पति,
1: स्वयं पति भी।
0: जी हाँ।
1: ओहो, कितना अन्याय हो गया। मेहरबानो, समझाते हैं दरोगा, याद राम के लिए, सुख कभी और दुख कभी, संसार की ये रीत है। सुख कभी और दुख कभी, संसार की ये रीत है। आज जिसकी हार है

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: आज दरोगा जी का आना हमारे घर पे कैसे हुआ? और फिर तो रुकया नहीं गया और सवाल करना शुरू कर दिया। क्यों दरोगा जी?
1: कहिए यादराम जी।
0: मैं इस भ्रम में हूँ, इस संशय में हूँ।
1: हाँ,
0: तुम्हारा आखिर हमारे घर पे आना क्यों हुआ? कारण बताओ।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
2: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
1: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
2: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पोन बदलने की जरूरत पड़ती है,
1: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
2: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
1: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
2: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
1: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। एसएमएफई यानी स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट क्षमता विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम एक खास सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के विषय में, यानी भाषा और संचार कौशल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यही एक वजह है कि स्टूडियो से निकलकर आज हमारा सुनो शारदा 90.8 एफएम पहुंच रहा है मुनामी फाउंडेशन, जो कि नोएडा में स्थित है। और इसी संबंध में हम वहाँ जो उपस्थित लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से शारदा यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ मुनामी फाउंडेशन ने उन लोगों को ट्रेंड किया ताकि वो कुछ अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छी दिशा अगर इंसान को मिल जाए तो वो यकीनन अच्छा कर सकता है। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: मुनामी एक फाउंडेशन है और SBS यानी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज से हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना और साथ ही साथ डॉक्टर रूपाली। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग यानी कि शारदा विश्वविद्यालय इनके साथ मिलकर क्या काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का यानी कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत सारी बातें हो चुकी है मेरी और मैं अब सीधी बात करना चाहता हूँ डॉक्टर रूपाली सक्सेना से। तो मैम, सुनो शारदा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि हमारा किस तरीके से यहाँ जुड़ना हुआ है और SBS यानी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज किस तरीके से इस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
3: जी सर, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं तो जो हम शिक्षा और या दीक्षांत की बात करते हैं वो सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स तक ही हम सीमित नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम, जो ये इनिशिएटिव हमने लिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, वो सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव था कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को वापस कुछ दे सकें। तो ये एक पहला कदम है हमारा इनिशिएटिव है SBS का, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का। और अगर मैं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूं और जो 3 महीने की ट्रेनिंग हमने करी, वो ट्रेनिंग हमने करी है क्रोशे का काम, जो धागे से काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आजकल हम लोग पर्यावरण को लेके और प्रदूषण को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। तो ये जो काम है ये धागे का काम है और जो सबसे बड़ी इसकी खूबी है, ये जो है ये दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं रीयूज़ एंड रीसाइकिल की बात। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक ग्रुप है और जैसे आपने बताया मुनामी फाउंडेशन, ये इन महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। और अगर SBS की बात करें तो जो हमारा रोल था वो इन महिलाओं को लेकर, वो इनको सबसे पहले ये कैसे अपना लाइवलीहुड, अपना जो जीवन व्यतीत करने के हाथ जीवन शैली है उसको कैसे आप सुधार कर सकते हैं। और दूसरा था कि जहाँ हाथों से ये ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही थी, ये जो ट्रेनिंग थी ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट रूप में, जैसे हम बात करें कि लीडरशिप में, कम्युनिकेशन में, या आप बात करें कि किस तरह से आपको बिजनेस एटिकेट, क्योंकि जहाँ इन महिलाओं को हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि इनको काम आ गया, इनको वो काम आगे बढ़ाना है। तो एक हम एंटरप्रेन्योर रूप में देख रहे हैं इन महिलाओं को, कल के एंटरप्रेन्योर के रूप में, ये कैसे जो है ये काम को अपना स्क्रैच से लेके जहाँ माल बनाना है हाथों से और मार्केट में जाके इस माल को जो है बेचना है और अपनी लाइवलीहुड जो है कमानी है। तो ये जो पूरी 3 महीने की ट्रेनिंग रही हमारे साथ जो है वो करीबन 30 लोगों का ग्रुप था और सारी महिलाएं थी और इनकी बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है। और एक जो खास बात है, ये सभी लोग माइग्रेंट हैं, मतलब ये यहाँ दिल्ली के वासी नहीं है, ये बेसिकली ईस्टर्न बिहार से सब लोग आए हुए हैं। तो इनके साथ जो इनके बात करने का तरीका है, जो शैली है, वो बहुत अलग है जो हमारे दिल्ली के लोगों में होती है। और इनको जो कस्टमर है, जो इनका एंड क्लाइंटेल है, वो सारा यहाँ दिल्ली NCR का ही है। तो जो हमारी ट्रेनिंग रही वो कुछ तरह से इन बातों को लेके रही कि आप देख रहे हैं ये आपका कोरोना का टाइम भी था, तो ये किस तरह से अपने आप को डिजिटली जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। तो जो ये सारे 3 महीने महीने की ट्रेनिंग है, हमने ऑनलाइन मोड में ली, जूम या जीमीट के ज़रिए में रही है ट्रेनिंग। और जो बातें हमने करी, जैसे मैंने कहा कि नेतृत्व की बात करी, ट्रेन द ट्रेनर मोड की बात करी, कि आगे जाके जो 30 महिलाएं हैं वो आगे जाके बाकी जो इनके ग्रुप है, ये जो मोनामी फाउंडेशन है इनके साथ करीब 160 महिलाएँ जुड़ी हुई है, तो आगे जाके ये कैसे

0: ली है इस फाउंडेशन के जरिए मिली है, तो वो जिंदगी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम आएगी। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, तो ये सारी बातें आपने इस बात के जरिए हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दी। फाइनली अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि सम अप करने से पहले, क्योंकि SBS यानी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का एक भाग है, साथ ही साथ आपके साथ जुड़ा रहा शारदा यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सुनो शारदा 90.8 FM भी, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक कवरेज भी इन लोगों को मिल रहा है, इनकी बात हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं, ये एक जनसंचार का माध्यम है ताकि लोग अवेयर हों, लोग जान पाएँ, पहचान पाएँ अपना जो स्किल है और वो लोग इनसे कैसे जुड़ सकें।
1: बिल्कुल, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने स्कूल ऑफ मीडिया एंड फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का। यहाँ पे मैं एक बात जो कहना चाहूँगी वो एक हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी, प्रदर्शनी लगाई थी, जहाँ पे ऐसे महफीमी से लोग आए थे और उन्होंने पूरा इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और इस वीडियो को लेकर हमने मोनामी फाउंडेशन के साथ शेयर करी, और ताकि जो बात आपने कही कि जो इनका पब्लिसिटी है, जो इनका आगे हम जो बढ़ावा दे सकें, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि इस तरह का क्रोशे का काम भी होता है। अब मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो स्ट्रेस बॉल, तो हमारी जनरल नोशन है पब्लिक की वो प्लास्टिक की होगी या रबड़ की होगी, लेकिन ये जो है ये बनाते हैं, ये धागे से बनाते हैं, तो लेकिन काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। और जो वीडियो हमने बनाई और जो भी हमने पब्लिसिटी या जो क्रिएटिव्स बनाए उसके माध्यम से हम अपनी बात जो है, इन लोगों की बात जो है वो हम अपने सामान्य लोगों के, अपनी जनरल पब्लिक तक पहुँचा सके, तो काफ़ी जो ये कोलैबोरेटिव वर्क रहा, ना कि सिर्फ ऐसे महफीमी बल्कि हमारे साथ जो जुड़े वो स्कूल ऑफ डिज़ाइन भी था, जहां उन्होंने इनको डिज़ाइन के बारे में जानकारी दी, और अब एक हम नया एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जहां स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर भी जुड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी आजकल प्रचलित है, तो जो रंग है वो भी अब हम लोग, जैसे हमने कहा कि ये एक सस्टेनेबल और सेल्फ सस्टेनेबल मोड में इन औरतों को लाने की बात है, तो किसी भी चीज़ के लिए इनको बाहरी किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, तो हम इनको नेचुरल प्रोडक्ट से डाई कैसे बनाते हैं, तो वो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के साथ जुड़ के, शारदा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के उसकी ट्रेनिंग भी हम इन लोगों को अब दे रहे हैं।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना अनुभव हमसे साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके डिपार्टमेंट के लिए। सो लिसनर्स, हमारे साथ जुड़ी रही डॉक्टर पारू सक्सेना जो कि मोनामी फाउंडेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, महिला सशक्तिकरण का यहाँ मुझे एक अच्छा उदाहरण देखने को मिला। हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर मुझे कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। थैंक यू।

0: सुनो शारदा 90.8 FM से, मैं हूं गगन। और आज स्टूडियो से निकलकर मैं बाहर आया हूं। यहां एक जगह है जो कि नोएडा में मोनामी फाउंडेशन और मोनामी फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। यहाँ के मुझे ये लग रहा है कि एक विमेन एम्पावरमेंट का यानी कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। एक छत के नीचे दूर दराज से महिलाएं हैं जो कि इकट्ठी होती हैं और काम को यहाँ सीख रही हैं, कुछ अच्छा कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए और समाज में कहीं ना कहीं एक योगदान दे रही हैं। आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा सटीक उदाहरण यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मेरे साथ ग्रुप मेंबर हैं, तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मेरा नाम है अंचल मिश्रा, मैं सेक्टर 122 में रहती हूँ और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं मोनावी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पे मुझे अनुराग मैम ने ये क्रूश का काम बहुत अच्छे से सिखाया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जिसमें बोतल कवर है और बॉल बनाना है, ऑल बनाना है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी से वहाँ भी कर वो मैम रूपाली मैम और पालू मैम वो भी हम लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी जिसमें 12 क्लासेस करवाई है। उस क्लासेस में उन्होंने बहुत सारी बातें सिखाई हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई है कि कैसे काम करना है, कैसे काम को बढ़ाना है, सब मिलके कैसे काम करना है और मार्केटिंग काम में कैसे करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे उन सामानों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है ताकि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके।
0: क्या बात है, आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है और जो आपने सीखा है समझा वो सारी बातें आपने एक फ्लो में एक ही बार में हमें बता दी, तो मुझे आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और बातें मैं ज़रूर आपसे करूँगा। मेरे साथ एक और मेंबर हैं, तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम है रिंकू झा।
0: रिंकू मैम आप कहाँ से हैं?
2: बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ एक सेक्टर 122 में रहती हूँ। और ये अनुराग मैम ने हम लोगों को ये क्रूस का काम सिखाया है और तरह तरह के प्रोडक्ट बनाना क्रूस से सिखाया है। बहुत सारा चीज़ जैसे टैटल, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। और सर ये है कि 3 से हम लोगों का ट्रेनिंग भी हो रहा है, मार्केटिंग के बारे में भी हम लोग सीख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बनाना और उनको कैसे बेच सकते हैं वो भी उन्होंने सिखाया है। और हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, 12-20 आदमी करीब, सब लेडीज़ हैं और हम लोगों को काम करके बहुत अच्छा भी लग रहा है। और सर और क्या बता?
0: जी चलिए कोई बात नहीं, आपने जो बातें बताई बहुत अच्छा, यहाँ से आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, काम करने में मज़ा आ रहा है। ये कह सकता हूँ कि एक करियर की भी बातें हैं, यहाँ पर लोगों को गाइडेंस भी मिलती है, लोगों को गाइड भी किया जाता है कि किस तरीके से हम अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि करियर की जब बात होती है कि हर किसी का एक अपना सपना होता है, फ्यूचर वो देखता है कि मुझे ये करना है, बेहतर करना है, तो आपको कैसा लगता है किस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ सीख रही हैं? आपकी जो कला कौशल है उसके बारे में आप मुझे बताइए कि क्या आप यहाँ सीख रही हैं और क्या सोचती हैं कि मुझे फ्यूचर में यहाँ से बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है।
3: जी सर, मैं अनीता हूँ, सेक्टर 122 में रहती हूँ, मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ। और मैंने मेरे क्रूसी का काम तो मुझे पहले भी थोड़ी बहुत आती थी लेकिन अनुराग मैम ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, पारुल मैम भी सिखाए, हमने 3 की ट्रेनिंग भी की और ट्रेनिंग में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी कि कैसे हम लोगों को एक साथ मिल के काम करना है, कैसे हम लोगों को मार्केटिंग में कुछ बेचना है, कैसे हम लोगों को आदमी बात करनी है और ये सब सिखाए। और हम तरह तरह के सामान बना भी लेते हैं हाथ की कला से और वो कला को हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हम लोगों के आत्मविश्वास जो है बहुत बढ़ी है, हम लोग किसी के आगे बोल सकते हैं, किसी के आगे जा सकते हैं। और मैं तो छोटी सी जॉब भी करती हूँ स्कूल में, तो वो भी कर रही हूँ और घर में आने के बाद मैं ये भी काम करती हूँ, टाइम जब जब मिलता है तब तक मैं ये काम करती हूँ और ये करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे मैं सोचती हूँ कि जितने भी करे सब करे और सब आगे बढ़े। मैं लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से कि हम लोगों को ऐसे ही काम दे और हम लोग ऐसे ही काम करते रहे।
0: कह सकते हैं कि आप फुल टाइम स्कूल में काम कर रही हैं और यहाँ पार्ट टाइम भी आप काम कर रहे हैं?
3: और 3 तक मैं स्कूल में ही रहती हूँ
0: और यहाँ आप पार्ट टाइम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रोडक्ट को यहाँ लाकर सेल
3: कर रही हूँ सर। और जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलते हैं मुझे मैं बना भी लेती हूँ।
0: अच्छा, वो प्रोडक्ट जो भी आप लाते हैं फिर वो यहाँ सेल हो जाता है, उसका जो आमदनी है वो आपको मिल जाता है? अच्छा चलिए, फाइनली मैं आपसे एक संदेश जानना चाहूँगा। तीनों की बात मैंने आपसे जान ली, सुन ली, समझ ली, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, जिस तरीके से समाज की कुछ बंदिशों को तोड़कर आप लोग आगे आए, काम कर रहे हैं, सीख रही हैं, तो क्या एक संदेश होगा जो कहीं ना कहीं किसी डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपना भविष्य उज्ज्वल करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रही, तो फाइनली एक मैसेज क्या होगा, आप पहले मुझे बताएं।
1: सर मैसेज यही होता कि हम लोग भी डरते थे, हमारी भी शादी को 16-17 साल हो गए, तो हम लोग भी डरते, ऐसे कुछ नहीं करते थे घर में, यही ये मेरा रिश्तेदार है वो क्या क्या करेंगे, डर के बैठी रहती थी। लेकिन उसमें घाटा मेरा है, अभी बच्चे को कुछ चाहिए तो वो दूसरे को पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आएंगे। तो इसीलिए अब जब से इसमें जुड़ी हूँ उसमें हिम्मत आ गई है, जाकि यहाँ भी काम कर सकती हूँ, हो सकता है मैं आगे भी जाऊँ। तो इसीलिए हिम्मत सबको बढ़ाना चाहिए, घर में बैठे कोई फायदा नहीं।
0: क्या बात है, एक संदेश है समाज के लिए कि हिम्मत होगी तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे।
3: कि सभी आगे बढ़े और सभी घर से निकल के काम करे, एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे कि मैं एक दूसरे पर डिपेंड हूँ, अपना अपना पैरों पर खड़े होने की सबको हक है।
0: क्या बात है, तो मुझे लगता है कि आप तो शुक्रगुजार हो ही रही हैं मुनामी फाउंडेशन की। तो और सही बात है कि जहाँ एक काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लोग
2: नारी शक्ति को भी पहचानना चाहिए सर। हाँ। क्योंकि नारी के अंदर बहुत शक्ति होती है, ये लोग हम लोग देर से समझते हैं, क्योंकि समाज हम लोगों को ऐसा मतलब तरीके से समझाया, लेकिन अभी हम लोग जो हैं सो उससे थोड़ा ऊपर उठ के निकल गए हैं घर से।
0: अब तो इस तरीके से माहौल भी बदल गया होगा, सम्मान मिलता है, 2 रुपये आपके हाथ में भी होते हैं।
3: जिस तरह एक आदमी करते हैं तो सभी बोलते हैं कि ये बाहर निकली, ये करी वो करी, अभी तो सभी कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी ये हिम्मत हो रही कि अब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर।
0: देखिए इससे कॉन्फिडेंस आता है कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि अगर बच्चा रुपया मांगता है तो आप बेफिक्र हो गए उसको स्कूल की फ़ी दे पाएंगे, अदरवाइज़ पहले तो हस्बैंड की सैलरी पर डिपेंड रहना पड़ता था कि तनख्वाह आएगी तब हम देंगे, बच्चे के शौक मौज भी पूरे होंगे और आप भी जो कुछ मार्केट से शॉपिंग करना चाहते हैं वो भी आपके टाइम टू टाइम हो रही होंगी। तो कह सकते हैं लिसनर्स, यहाँ पर एक नारी सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। एक छत के नीचे अलग अलग कलाकारी के साथ लोग काम कर रहे हैं, मधुबनी का यहाँ इन्होंने जिक्र किया, सीखती हैं समझती हैं उस काम में, वो दक्षता हासिल कर रही हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 0120406205 पर आप मुझे कॉल करके बताइएगा जरूर। आप सबका मेरे साथ बात करने के लिए, मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। थैंक यू।
4: अभी बता।

0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है, हर पल हर वक्त हमेशा एक ही नाम को तो प्यार का है, नैना।
1: सुनो शारदा 90.8 FM पर, मैं हूँ गगन और इस वक्त मैं नोएडा में हूँ और यहाँ एक मोनामी फाउंडेशन है SBS यानी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडी से हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रूपाली, जो कि इस फाउंडेशन के साथ और SBS के साथ कहीं ना कहीं एक ब्रिज का काम कर रही हैं, यानी कि एक सेतु का काम कर रही हैं। और इसके अलावा जब मैं धरातल पर देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी मैम अभी कर रही हैं, करवा रही हैं, तो ये सारा होल प्रोसेस क्या है, आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। सो डॉक्टर रूपाली, आपका सुरुशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। जहाँ से मैं शुरू करूँ, तो हमने शुरू किया था SWOT एनालिसिस से। इन महिलाओं का हमने एनालिसिस किया था कि इनमें काबिलियत क्या है, इनमें कमियां क्या है, आगे ये और कैसे बढ़ सकती हैं, इन सब का एनालिसिस करके फिर हमने जो ये ट्रेनिंग इनको दी है उसको अच्छे से डिज़ाइन किया है इन चीज़ों के बेसिस पे। आगे फिर हमने इनको कैसे कम्युनिकेशन के ऊपर भी हमने ट्रेनिंग दी है कि कैसे बातचीत की जाए लोगों के साथ, अगर ग्राहक आते हैं तो उन्हें किस किस तरीके से अच्छे से सुना जाए, सुनकर उनकी बातों को समझकर फिर उन्हें अपने उत्पादों के बारे में बताया जाए, उसके मुनाफे के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये हाथ से अपने हाथों से डिज़ाइन करके क्रोशिया से उत्पाद बनाती हैं, जो कि बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत कलरफुल ये उत्पाद बनाती हैं क्रोशिया से। और ये इनके साथ ही साथ जब ये बनाती हैं तो इनको हमने इस चीज़ की ट्रेनिंग दी है कि इन चीज़ों का, इन उत्पादों का लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लोगों को इनके फ़ायदों का जानना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग इनको ख़रीदेंगे। तो इस सब की हमने ट्रेनिंग दी है कुल मिला के। और यही नहीं, हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि पूर्ण तरह हिंदी में कैसे बात की जाए, क्योंकि हमें आजकल हम लोगों को क्या हो गया, अंग्रेज़ी ज़्यादा, हम बोलचाल अंग्रेज़ी में ज़्यादा करते हैं और उस वजह से हम हिंदी कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं। तो यह इस ट्रेनिंग के वजह से हमें ये मौका मिला कि हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सकें, तो ये हमने उनसे सीखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और हम आगे भी यही चाहेंगे कि ऐसी ही महिलाओं से हम जुड़ते रहें, उनको सिखाते रहें और उनसे भी सीखते रहें।
1: थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू, धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट यानी कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम यानी SMFE क्षमता विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने बात की भाषा और संचार कौशल के संबंध में। आज हमने जाना कि किस तरीके से महिलाओं को ट्रेन किया गया, किस तरीके से इन महिलाओं ने समय समय पर अपनी ट्रेनिंग ली और किस तरीके से वो आज अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और वो समाज का एक हिस्सा बनी हुई हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी दे रही हैं। मैं आशा करता हूं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज 01204060205 पर आप मुझे कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती है। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
1: पृष्ठ संख्या 125, परियोजना 6, आग के बिना खाना बनाना। इस परियोजना में आप आग के बिना खाना बनाना सीखेंगे। आप व्यंजन बनाने की विधि पढ़ेंगे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए उपयुक्त रसोई उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग करना सीखेंगे। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे: आग के बिना खाना बनाने के बारे में सीखने में, व्यंजन सूची यानी मेन्यू तय करने के लिए एक सर्वेक्षण करने में, औजारों और उपकरणों का उपयोग, सामग्री मापन और खाद्य पदार्थ तैयार करने में, अपशिष्ट पदार्थों का उचित ढंग से निपटान करने में, पेय पदार्थ तैयार करने में, भोजन यानी फूड मेले का आयोजन करने में। चित्र 6.1, रसोई घर में मिलकर काम करना। यहाँ एक चित्र है, इसमें कुछ लोग रसोई घर में मिलकर काम कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 126, हम सभी को खाना पसंद है। हम में से कुछ को खाना बनाना भी पसंद होता है। खाना बनाने में उबालना, पकाना, भाप से पकाना, भूनना और तलना जैसी कई विधियां सम्मिलित होती हैं। कच्चे भोजन को उच्च तापमान पर पकाने से भोजन में उसके गुण बदल जाते हैं, जैसे कीटाणु मर जाते हैं, भोजन की बनावट और स्वाद में सुधार आदि होता है। ये प्रक्रिया भोजन को अधिक स्वादिष्ट और खाने में आसान बनाती है। खाना पकाने के लिए हम सामान्यतः गैस या अन्य प्रकार के चूल्हे यानी स्टोव का उपयोग करते हैं। ऊष्मा का प्रयोग करके हम खाना पकाते हैं। हम जो खाना तैयार करते हैं उसके आधार पर हम भिन्न भिन्न बर्तनों का भी उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम बिना आग के भी खाना बना सकते हैं? इसके अतिरिक्त हम कुछ व्यंजन बिना गर्म किए भी खाते हैं। कच्चे फलों के अतिरिक्त हम कुछ सब्जियां भी कच्ची खाते हैं। केवल वे सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं जिन्हें खाने योग्य बनाने के लिए पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आप कच्चे आलू खा सकते हैं? कच्ची सब्जियां अपना अधिकतम पोषण मूल्य बनाए रखती हैं क्योंकि वे ऊष्मा के संपर्क में नहीं आती हैं। ऊष्मा के संपर्क में आने से कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। आग या ऊष्मा के उपयोग के बिना खाद्य सामग्री और व्यंजन तैयार करने से रचनात्मकता और पोषण की नई संभावनाएं सामने आती हैं। स्वस्थ भोजन बनाने के लिए ताजी और कच्ची सामग्री का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसमें सलाद और ताजा स्मूदी से लेकर चटनी और मिठाई बनाने की तकनीकों की अनंत संभावनाएं सम्मिलित हैं। ये दृष्टिकोण न केवल अवयवों के पोषण मूल्य को संरक्षित करता है बल्कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करने से नियंत्रित भोजन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है। खाना बनाना न केवल खुशी का अनुभव कराता है बल्कि इससे गर्व की भावना भी विकसित होती है। ये हमें सामूहिक कार्य यानी टीमवर्क और सहयोग के महत्व को समझने में भी सहायता करता है, क्योंकि जो लोग रसोई में काम करते हैं, जैसे रसोइया यानी शेफ, बर्तन धोने वाला, रसोई सहायक और अन्य लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। जब कोई घर पर खाना बना रहा होता है तो क्या आप उसकी सहायता करते हैं? भोजन के पोषक गुण। आपने विज्ञान में भोजन के विभिन्न घटकों, पोषक गुण, संतुलित आहार और संबंधित अवधारणाओं के विषय में सीखा होगा। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर आहार, विशेष रूप से कच्चे फलों और सब्जियों से प्राप्त पोषक तत्व हमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन बनाए रखने में सहायता करते हैं। पृष्ठ संख्या 127, मैं क्या कर पाऊंगी। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप ये कार्य करने में सक्षम होंगे: 1. रसोई में आवश्यक औजारों, उपकरणों और बर्तनों का उपयोग कर पाएंगे। 2. आग का उपयोग किए बिना स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर पाएंगे। 3. व्यंजनों को इस तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे कि वे आकर्षक दिखें। 4. खाद्य अपशिष्ट और बचे हुए भोजन का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान कर पाएंगे। मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? ट्रे, कटोरा, प्लेट और बर्तन, मापने वाले कप, चाकू, रसोई का तराजू, कर्तन पट्ट यानी चॉपिंग बोर्ड, छिलनी, कद्दूकस, कांटा, फेंटनी यानी विस्क, बड़ा चम्मच, लकड़ी की मथनी यानी माधानी। स्थानीय रूप से उपलब्ध फल, सब्जियां, दालें, दूध, दही, मुरमुरे, मूंगफली, मक्खन और ब्रेड, साबुन और पानी, एप्रिन, हेयर कैप या बालों को ढकने के लिए कोई कपड़ा, गीला और सूखा कचरा रखने के लिए कूड़ादान। चित्र 6.2 क ख ग घ ङ। यहां रसोई घर में काम आने वाली चीजें दिखाई गई हैं। रसोई के उपकरण बाएं से दाएं, क चॉपिंग बोर्ड और चाकू, ख मापने वाला कप, ग कद्दूकस, घ छिलनी और ङ फेंटनी। पृष्ठ संख्या 128। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? भोजन करने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ धोइए। नुकीले औजारों का उपयोग करते समय बेहद सावधान रहिए। औजारों का उपयोग करते समय जल्दबाजी ना करें, बल्कि उनका प्रयोग सावधानी से कीजिए। यदि पानी या कोई अन्य तरल पदार्थ गिर गया है तो उसे तुरंत साफ कर लीजिए, ताकि कोई फिसल कर न गिर जाए। अपने शिक्षक के साथ चर्चा किए गए सभी अन्य सुरक्षा नियमों का हमेशा पालन कीजिए। इंटरनेट सुरक्षा। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक से सहायता लीजिए। सावधान रहिए कि कुछ भी अपलोड या डाउनलोड न करें और व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा न करें। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? आपको उन व्यंजनों को बनाने की विधि जाननी होगी जिन्हें आप बनाने जा रहे हैं। व्यंजन विधि आपको बताती है कि कोई व्यंजन कैसे बनाया जाता है। इसमें सामग्री की सूची और अनुसरण करने के चरण होते हैं। खाना बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन आप इस परियोजना में कुछ नए तरीकों का उपयोग करेंगे जो इस प्रकार हैं। मिश्रण। सलाद या पेय में विभिन्न सामग्रियों को एक साथ मिलाना, फैलाना यानी स्प्रेडिंग। ब्रेड की सतह पर मक्खन या चीज फैलाना या चपाती रोल में चटनी लगाना। संयोजन। व्यंजन को बनाने के लिए सभी सामग्रियों को समायोजित करना, जैसे भेलपूरी।

तक पढ़िए, सामग्री की जांच कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास सभी आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तैयारी, उपकरणों और बर्तनों को एकत्रित कीजिए, चरणों का पालन करें, प्रत्येक चरण को सूचीबद्ध क्रम में पूरा कीजिए, अपरिचित शब्दों को खोजिए। यदि आपको कोई ऐसा शब्द दिखाई देता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो शब्दकोश का उपयोग कीजिए या शिक्षक से पूछिए। व्यंजन प्रस्तुति, आपका व्यंजन दिखने में जितना अच्छा है उसका स्वाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपके व्यंजन को स्वादिष्ट एवं आकर्षक बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। अपने व्यंजन को आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग रंग की सामग्री का उपयोग कीजिए। यदि आप फलों का सलाद बनाते हैं तो अलग अलग रंगों के फलों का उपयोग कीजिए। अपनी भोजन की प्लेट को साफ सुथरे ढंग से सजाइए। इसके साथ आप इस पर थोड़ी सी सजावट यानी गार्निश कीजिए, जैसे भेलपुरी की प्लेट पर कुछ सेब और मूंगफली सजाकर रखिए या छाछ पर पुदीने की पत्तियां डालकर इसे आकर्षक बनाइए। आप इंटरनेट पर आकर्षक ढंग से सजाए गए भोजन के चित्रों को देखकर अपने व्यंजन को आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए प्रस्तुति और सुंदर और व्यंजन और भोजन और प्रस्तुति और सुंदर और व्यंजन और भोजन और भारतीय आदि कीवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक विधि के नाम के सामने दिए गए स्थान में आप उस व्यंजन के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्रियों के अन्य नाम भी लिख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 130। छाछ बनाना। आपको चाहिए 2 कप दही, 2 कप पानी, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, कटे हुए पुदीने के पत्ते। क्या करें? 1 कटोरे में दही, पानी, जीरा पाउडर और नमक मिलाइए। चिकना होने तक फेंटिए। गिलास में डालिए और चाहें तो कटे हुए पुदीने के पत्तों से सजाइए। वैकल्पिक, जल जीरा बनाना। आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच जल जीरा पाउडर, 4 कप ठंडा पानी, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच पुदीना के पत्ते बारीक कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए। क्या करें? 1 बड़ा जग लीजिए और उसमें कटे हुए पुदीने के पत्ते, कटी हुई धनिया के पत्ते, जल जीरा पाउडर और नींबू का रस डालिए। इन्हें अच्छी तरह मिलाइए। जग में 4 कप पानी डालिए और तब तक मिलाइए जब तक कि सभी सामग्री पूरी तरह से मिल न जाए। यदि संभव हो तो आप सम्मिश्रक यानी ब्लेंडर का उपयोग भी कर सकते हैं। मिश्रण को गिलासों में समान रूप से डालिए और बचा हुआ पानी भी गिलासों में डालिए। इसके बाद अच्छी तरह मिलाइए, तुरंत परोसिए। पृष्ठ संख्या 131। कोकम शरबत बनाना। आपको चाहिए 10-12 सूखी कोकम की पंखुड़ियां, 4 कप पानी, स्वादानुसार चीनी या शहद, भुना हुआ जीरा पाउडर वैकल्पिक। क्या करें? कोकम की पंखुड़ियों को 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगोइए। कोकम में भिगोए हुए पानी को जग में छान लीजिए, स्वादानुसार चीनी या शहद डालिए और घुलने तक हिलाइए। अतिरिक्त स्वाद के लिए 1 चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर डालिए वैकल्पिक। परोसने से पहले फ्रिज में ठंडा कीजिए वैकल्पिक। सलाद बनाना। आपको चाहिए स्थानीय रूप से उपलब्ध 3 कप कटी हुई सब्जियां, जैसे खीरे।

टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, सलाद। चौथाई कप वनस्पति तेल, दो बड़े चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच शहद, स्वादानुसार नमक और काली मिर्च। क्या करें, सब्जियों को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। सलाद के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। एक छोटे कटोरे में वनस्पति तेल, नींबू का रस, शहद, नमक और काली मिर्च मिलाइए। मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के लिए फेंटिए। स्वाद चखिए और मसाला समायोजित कीजिए। एक बड़े कटोरे में सब्जियों को सलाद, चटनी यानी ड्रेसिंग, नमक और काली मिर्च के साथ मिलाइए। पृष्ठ संख्या 132। कोशिम बीर बनाना। आपको चाहिए एक कप। क्या करें, एक कटोरी में कटा हुआ नारियल, मीठा गाढ़ा दूध, कोको पाउडर और वेनिला रस को मिलाइए। तब तक मिश्रित कीजिए जब तक कि सब कुछ अच्छी तरह से मिल न जाए और एक गाढ़ा एवं चिपचिपा मिश्रण न बन जाए। मिश्रण के छोटे छोटे हिस्से निकालिए और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच में लड्डू की तरह गोल कीजिए। आप उन्हें अपनी पसंद के किसी भी आकार में बना सकते हैं, लेकिन वे आमतौर पर छोटे होते हैं। अगर चाहें तो लड्डू यानी बॉल्स को अतिरिक्त कद्दूकस किया हुआ नारियल या कोको पाउडर में समान रूप से लपेट सकते हैं। लेपित लड्डू यानी बॉल्स को कागज से ढकी प्लेट या ट्रे पर रखिए। लड्डू यानी बॉल्स को कमरे के तापमान पर कम से कम 1-2 घंटे के लिए व्यवस्थित होने के लिए छोड़ दीजिए। इस दौरान वे थोड़े सख्त हो जाएंगे, जिससे उन्हें हाथ में पकड़ना आसान हो जाएगा। एक बार जब वे व्यवस्थित हो जाएं, तो आपके नारियल चॉकलेट लड्डू यानी बॉल्स खाने के लिए तैयार हैं। यहाँ एक चित्र है, उसमें नारियल चॉकलेट लड्डू प्लेट में रखे हुए हैं। पृष्ठ संख्या 138। गतिविधि 2, व्यंजन बनाना तय करना। विद्यालय में विद्यार्थियों का सर्वेक्षण कीजिए ताकि पता चल सके कि उन्हें क्या खाना पसंद है। आप नीचे दिए गए कुछ सवाल पूछ सकते हैं। 1, आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है? 2, आपको कौन से व्यंजन पसंद हैं जिन्हें बिना आग के बनाया जा सकता है? तालिका 6.1। सर्वेक्षण के दौरान विद्यार्थियों द्वारा बताई गई खाद्य वस्तुओं की प्राथमिकताएं, 1 से 5 तक प्राथमिकता दें। 1, सबसे कम पसंद। 5, सबसे अधिक पसंद। क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, छाछ, भेलपूरी, अंकुरित चाट, सलाद, सैंडविच, जलजीरा, नींबू पानी, कोकम शरबत, कोशिम बीर, फलों की चाट, खीरे का रायता, श्रीखंड, नारियल चॉकलेट लड्डू यानी बॉल्स। 1, खाली स्थान। 2, खाली स्थान। 3, खाली स्थान। 4, खाली स्थान। 5, खाली स्थान। सर्वेक्षण के आधार पर विद्यालय में गतिविधि के भाग के दौरान तैयार किए जाने वाले व्यंजनों की सूची बनाइए। 1, खाली स्थान। 2, खाली स्थान। 3, खाली स्थान। 4, खाली स्थान। 5, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 139। क्या आप जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके खाद्य पैकेट पर जानकारी पढ़ी जा सकती है? क्या आपने किसी सामग्री के पैकेट के पीछे मोटी और पतली काली रेखाएं देखी हैं? इसे बार कोड कहा जाता है। इस कोड में ऐसी जानकारी होती है जिसे मशीनें पढ़ सकती हैं। आप सामग्री

सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, सामग्री प्रयोग की अंतिम तिथि आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस बार कोड को पढ़ने हेतु गूगल लेंस जैसे मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी खाद्य पैकेट के बार कोड को पढ़ने का प्रयास कीजिए। गतिविधि 3, खाद्य सामग्री को मापना। आपने अपनी विज्ञान विषय की कक्षाओं में मापन की मानक और गैर मानक इकाइयों के बारे में चर्चा की होगी। खाना बनाते समय सामग्री को मापने के लिए आमतौर पर मानक और गैर मानक दोनों इकाइयों का उपयोग किया जाता है। इन मापों को समझना आपकी तैयारी में सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। उदाहरण के लिए, एक चुटकी चीनी गैर मानक माप और 10 ग्राम आटा मानक माप है। यदि रसोई में तराजू या मापने वाले कप उपलब्ध नहीं है तो आप सामान्य रसोई की वस्तुओं जैसे कप, चम्मच और बड़ा चम्मच का उपयोग करके सामग्री की मात्राओं का अनुमान लगा सकते हैं। तरल पदार्थों की मात्रा मापने के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। एक चम्मच में लगभग 5 मिलीलीटर तरल पदार्थ हो सकता है। एक बड़े चम्मच में लगभग 15 मिलीलीटर तरल पदार्थ हो सकता है। एक कप में लगभग 250 मिलीलीटर तरल पदार्थ हो सकता है। किसी भी तरल पदार्थ का 1 लीटर माप 1 लीटर की पानी की बोतल की क्षमता से अनुमानित किया जा सकता है। इसलिए ये जानना लाभदायक होता है कि एक कप या बड़े चम्मच में किसी सामग्री के कितने ग्राम या लीटर आ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 140। कप और तराजू का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की सामग्री, तरल और ठोस को मापा जा सकता है। किसी भी सामग्री की समान मात्रा को कप, बड़ा चम्मच या एक चम्मच टीस्पून से मापिए और अपने अवलोकनों को तालिका 6.2 में अंकित कीजिए। तराजू चित्र 6.3 का उपयोग करके ये मापना कि एक कप, एक चम्मच या बड़ा चम्मच यानी टेबलस्पून में कितनी सामग्री आ सकती है। ये उचित मात्रा में सामग्री को मापने में सहायक होगा। चित्र 6.3 तराजू। यह एक चित्र है, इसमें एक तराजू दिया गया है। तालिका 6.2 सामग्री की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए परिवर्तक, घटक, मात्रा ग्राम या लीटर में, एक कप, एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच यानी टेबलस्पून, शहद खाली स्थान, नींबू का रस खाली स्थान, खीरा कटा हुआ खाली स्थान, आटा या मैदा खाली स्थान। गतिविधि 4, उपकरणों की देखभाल और सुरक्षा। रसोई के उपकरणों का उचित उपयोग और संचालन न केवल खाना बनाने के अनुभव को बेहतर बनाता है बल्कि सुरक्षा और स्वच्छता भी सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, नुकीले चाकू को सावधानी से संभालना चाहिए। काटते समय चॉपिंग बोर्ड का उपयोग कीजिए और हमेशा खाद्य पदार्थ को शरीर से दूर रखकर काटिए तथा धारदार पत्ती या ब्लेड से अंगुलियां दूर रखिए। व्यंजन बनाने की विधि की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मापने वाले कप और व्यंजन बनाने की विधि की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मापने वाले कप और चम्मच का उचित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। ब्लेंडर और मिक्सर जैसे उपकरणों को निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। पर संदूषण यानी क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने और रसोई का वातावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए उपयोग के बाद उपकरणों को सही तरीके से साफ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 141, तालिका 6.3,
उपकरणों के रेखाचित्र यानी स्केच बनाइए। घटक, उपकरण का रेखाचित्र यानी स्केच। चाकू, कद्दूकस यानी ग्रेटर। फेंटनी यानी विस्क। छिलनी यानी पीलर। रेखाचित्र के लिए खाली स्थान। गतिविधि 5, खाद्य सामग्री का भंडारण करना। विभिन्न सामग्रियों को अनेक प्रकार की सफाई और भंडारण विधियों की आवश्यकता होती है। खाद्य सामग्री की ताजगी बनाए रखने और खराब होने से बचाने के लिए उसका उचित भंडारण करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अनाज और फलियों को कीटों और नमी से बचाने के लिए उन्हें वायुरोधक डिब्बे यानी एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए। इसी तरह मसालों और जड़ी बूटियों को गर्मी और रोशनी से दूर वायुरोधक डिब्बे यानी एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए। सामग्रियों को अलग अलग रखने के लिए छोटे कटोरे, प्लेट या डब्बे का उपयोग कीजिए। यदि आपके पास कई सामग्रियां हैं तो आप भ्रम से बचने के लिए उन्हें चिह्नित यानी लेबल कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 142। तालिका 6.4 में विभिन्न सामग्रियों के लिए आदर्श भंडारण विधियों की पहचान कर अंकित करें। तालिका 6.4, विभिन्न सामग्रियों के लिए भंडारण। सामग्री भंडारण का सबसे अच्छा तरीका, जैसे कमरे में ठंडी जगह, फ्रिज में। कठोर फल, नरम फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्याज, कटी हुई सब्जियां, ब्रेड, दूध, खाली स्थान। गतिविधि 6, रसोई अपशिष्ट का प्रबंधन और निपटान। अपशिष्ट का एक उत्तरदायी तरीके से प्रबंधन और निपटान करने का प्रभावी तरीका रसोई के अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग डिब्बों में बांटना है। जैविक अपशिष्ट को अलग से एकत्रित किया जा सकता है और इसे बागवानी के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाने के लिए खाद या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यदि संभव हो तो इसका निपटान नगर निगम की खाद बनाने की योजनाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है। अपशिष्ट के पृथक्करण और निपटान के लिए स्थानीय दिशा निर्देशों और विनियमों का पालन कीजिए। खाली डिब्बे जैसे बोतलें, जार और खाद्य प्लेट के पुनर्चक्रण के लिए अलग तरीका अपनाना चाहिए। साफ कागज, अखबार, पत्रिकाएं और कागज की पैकेजिंग को भी पुनर्चक्रण के लिए अलग से रखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 143। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, ख, चित्र 6.4। क, अपशिष्ट को अलग करना। ख, अलग किए गए अपशिष्ट का निपटान। यहां दो चित्र हैं, इनमें अपशिष्ट को अलग करना और अलग किए गए अपशिष्ट का निपटान करना समझाया गया है। 1, आपने अलग किए गए अपशिष्ट का निपटान कहां किया? खाली स्थान। 2, प्लास्टिक के डिब्बों का उपयोग करने के बाद आपने उनका क्या किया? खाली स्थान। 3, रसोई में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए आपने क्या किया? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 144। 4, खाद बनाने के लिए किस तरह के अपशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है? खाली स्थान। 5, अवशेष भोजन को फेंकने के बजाय हम उसे कैसे उपयोग कर सकते हैं? खाली स्थान। गतिविधि 7, पेय पदार्थ बनाना। पेय पदार्थों में पानी के अलावा कई प्रकार के पेय भी सम्मिलित होते हैं। इसके उदाहरणों में नींबू पानी, छाछ, जलजीरा और कोकम शरबत सम्मिलित हैं। चित्र 6.5, छाछ तैयार करना।
यहाँ एक चित्र है, इसमें बच्चे छाछ तैयार कर रहे हैं। एक, आपने कौन सा पेय पदार्थ तैयार किया? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 145। दो, पेय पदार्थ बनाने के लिए उपयोग की गई सामग्री और उनकी मात्रा की सूची बनाइए। ये भी अनुमानित कीजिए कि उपयोग में लाई गई सामग्री से आप कितने लोगों को परोस सकते हैं। खाली स्थान। तीन, अन्य समूहों द्वारा बनाए गए पेय पदार्थों का स्वाद लीजिए। क्या आपको स्वाद में कोई अंतर समझ आया? हाँ या नहीं? खाली स्थान। चार, दूसरे समूहों को सुझाव दीजिए और उनसे सुझाव भी लीजिए। क्या आपने कोई सुझाव क्रियान्वित किया? यदि हाँ तो आपने उन्हें कैसे सम्मिलित किया? जैसे सामग्री की मात्रा को समायोजित करना। खाली स्थान। पांच, अपशिष्ट की मात्रा का वर्णन कीजिए, जैसे आधा बैग, एक बैग मात्रा का अन्य विवरण। खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 146। गतिविधि 8, काट कर और मिलाकर व्यंजन तैयार करना। अब जब पेय पदार्थ तैयार हो गए हैं तो आप ऐसे व्यंजन बनाना शुरू कर सकते हैं जिन्हें काटने और मिलाने की आवश्यकता है। चित्र 6.6 का अध्ययन कीजिए। आप खाने के लिए तैयार फलों और सब्जियों को काटेंगे और उन्हें नमक, नींबू के रस या किसी अन्य सामग्री के साथ मिश्रित कर स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे। काटकर और मिलाकर बनाने वाले खाद्य पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं सलाद और फलों की चाट। गतिविधि कार्य करने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र 6.6, काटकर और मिलाकर व्यंजन तैयार करना। यहाँ एक चित्र है, इसमें बच्चे काटकर और मिलाकर व्यंजन तैयार कर रहे हैं। एक, आपने आज क्या बनाया? दो, आपने कैसे तय किया कि कौन सी सामग्री का उपयोग करना है? खाली स्थान। इस व्यंजन को बनाने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या था? खाली स्थान। चार, क्या आपने इसे तैयार करते समय कोई नया कौशल सीखा? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 147। पांच, क्या आपने व्यंजन बनाने की विधि में अपने विचार जोड़े? अगर हाँ तो आपने क्या बदलाव किए? खाली स्थान। छह, क्या आपने इस व्यंजन को बनाते समय किसी और के साथ कार्य किया? आपने कार्यों को कैसे बांटा? खाली स्थान। सात, साथ मिलकर काम करने का सबसे अच्छा पहलू क्या था? खाली स्थान। आठ, इस व्यंजन को बनाकर आपने क्या सीखा? खाली स्थान। नौ, गतिविधि कार्य से कितनी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न हुआ? गतिविधि 9, काटकर और संयोजन कर व्यंजन तैयार करना। अब अगले चरण की ओर बढ़िए। व्यंजन को संयोजित कीजिए। खाद्य सामग्री को लेकर थोड़ी मेहनत से कुछ विशेष या नया बनाना ही व्यंजन संयोजित करना होता है। जिन व्यंजनों को तैयार करने की जरूरत होती है उनके उदाहरण हैं कोशिम्बीर, अंकुरित चाट, भेलपुरी, नारियल चॉकलेट लड्डू यानी बॉल्स, खीरे का रायता और सैंडविच। पृष्ठ संख्या 148। चित्र 6.7। मेले में भोजन परोसने से पहले सुनिश्चित करें कि भोजन स्वादिष्ट हो। यहाँ एक चित्र है, इसमें मेले में परोसने से पहले भोजन दिखाए गए हैं। व्यंजन बनाने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, आपने क्या बनाया? खाली स्थान। दो, व्यंजन बनाने के लिए उपयोग की गई सामग्री और प्रत्येक की मात्रा की सूची बनाइए। खाली स्थान। तीन, आपने जितनी सामग्री का उपयोग किया उससे

0: आप कितने लोगों को भोजन परोस सकते हैं? पृष्ठ संख्या 148। 4. अन्य समूहों द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद लीजिए। क्या आपको स्वाद में कोई अंतर लगा? हाँ या नहीं? उनसे सुझाव लीजिए और उन्हें भी सुझाव दीजिए। खाली स्थान। 5. क्या आपने उनमें से किसी सुझाव को क्रियान्वित किया? यदि हाँ तो कैसे? खाली स्थान। 6. कितना अपशिष्ट उत्पन्न हुआ? आधा बैग, एक बैग या कोई अन्य तरीका जिससे आप मात्रा का वर्णन करना चाहें? खाली स्थान। गतिविधि 10। भोजन मेले का आयोजन। आप तैयार किए गए व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए एक भोजन मेला आयोजित कर सकते हैं। अपने शिक्षक और साथियों की सहायता से छोटे पैमाने पर एक भोजन मेले की योजना बनाइए और उसका आयोजन कीजिए। पृष्ठ संख्या 150। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. आपको अपने व्यंजन में क्या विशेष लगा? खाली स्थान। 2. आगंतुकों को आमंत्रित करने के लिए एक पोस्टर या निमंत्रण पत्र बनाइए या सोशल मीडिया पर भेजने के लिए संदेश लिखिए। यहाँ संदेश लिखने के लिए खाली स्थान दिया गया है। 3. आप लोगों को व्यंजन चखने के लिए कैसे बुलाएंगे? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 151। 4. आप अपने स्टॉल और उसके आसपास स्वच्छता कैसे बनाए रखेंगे? खाली स्थान। 5. आप आयोजन के बाद साफ सफाई कैसे करेंगे? खाली स्थान। मैंने दूसरों से क्या सीखा? आपने जो किया उसके बारे में सोचिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. क्या आपको गतिविधि पुस्तक में दी गई व्यंजन विधि के अतिरिक्त कोई और व्यंजन बनाने की विधि मिली? हाँ या नहीं? 2. क्या आपने गतिविधि पुस्तक में दी गई व्यंजन बनाने की विधि के लिए किसी से सहायता मांगी? हाँ या नहीं? 3. क्या आपको समूह में कार्य करते समय किसी समस्या का सामना करना पड़ा? आपने इसे कैसे हल किया? 4. क्या आपने दूसरों से सामग्री का मापन सीखा? हाँ या नहीं? मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा? यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। प्रत्येक गतिविधि पर आपने लगभग कितना समय व्यतीत किया, इसका अनुमान लगाइए। इसे दी गई समय रेखा पर अंकित कीजिए। यदि आपने पुस्तिका में दी गई गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां की हैं तो संख्या और समय जोड़िए। पृष्ठ संख्या 152। गतिविधि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समयावधि, कालांश। यहां एक समय रेखा का चित्र दिया गया है। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं और क्या कर सकती हूं? अपनी स्वयं की व्यंजन बनाने की विधि बनाइए। आपने जो विभिन्न व्यंजन विधियां बनाई हैं उनसे सीखिए। व्यंजन का नाम, किस सामग्री की जरूरत है, क्या किया जाना है, खाली स्थान। सोचिए और जवाब दीजिए। 1. गतिविधि के दौरान आपको क्या करने में आनंद आया? 2. आप क्या अलग करना चाहेंगे? 3. क्या आपको लगता है कि आप बिना आग का उपयोग किए संपूर्ण संतुलित भोजन तैयार कर सकते हैं? हाँ या नहीं? 4. इस परियोजना से संबंधित कौन कौन सी नौकरियां हैं? अपने आसपास का अवलोकन कीजिए, लोगों से बात कीजिए और उत्तर लिखिए। आपने जो काम किया है उससे संबंधित कुछ नौकरियों के उदाहरण हैं रसोइया, महाराज, पाककर्मी, होटल में शेफ और एक कलाकार जो खाना विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, वाचन स्वर मुइनुल हुसैन, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: हाय नमस्कार, मैं हूं RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी मौसम की भविष्यवाणी। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना मौसम अच्छा कब और कैसे होता है। हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से, जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी और वर्षा इत्यादि। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी मौसम की भविष्यवाणी।

0: दरवाजे खिड़की बंद कर देना, लगता है तूफान आने वाला है।
1: अच्छा अभी करती हूँ।
0: अरे मानव तू कहाँ चला आप?
1: तूफान को देखने।
0: अरे ये तूफान क्या कोई जानवर है जो तुझे दिखाई दे जाएगा? हवा तेज हो जाए तो तूफान का रूप ले लेती है, तब हवा की आवाज साए साए आती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाले टूट जाती है।
2: हाँ मम्मी, हवा की आवाज

0: तो आ रही है।
1: ए सृष्टि बेटा, जल्दी से बाहर सूख रहे कपड़े उतार ले, वरना सारे के सारे उड़ जाएंगे।
2: अच्छा मम्मी। दीदी बाहर का नजारा कैसा है?
3: गिर रही काली घटा मतवारी,
2: तो सावन की आई बहार।
1: क्या उठपटांग गा रहे हो तुम लोग?
0: अभी तो मई का महीना है, सावन कहाँ से आ गया अभी?
2: पर मम्मी गाना तो ऐसा ही है, क्या केवल सावन में ही घटा आती है क्या?
4: हाँ मम्मी, एक गाना मैंने भी सुना है, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के।
2: मम्मी मेरे गाने में काली घटा आती है तो सावन आता है, और दीदी तुम्हारे गाने में काली घटा आती है तो ठंडी हवा आती है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि ठंडी हवा आई या नहीं।
1: अरे बुद्धू, हवा में उड़ जाएगा, बाहर जाएगा तो भीतर आके बैठ जा।
2: और हाँ देखता हूँ कि ठंडी हवा आई या नहीं।
1: अरे बुद्धू, हवा में उड़ जाएगा, बाहर जाएगा तो भीतर आके बैठ जा।
5: और हाँ सृष्टि, तू जरा अपनी बुआ जी के घर फोन लगाना और फोन करके पूछ कि विवेक और तुम्हारे पापा अभी वहाँ से निकल पड़े या नहीं।
4: हाँ जी मम्मी।
5: और सुन, अगर अभी नहीं निकले ना तो कहना अभी वो वहीं रहे, बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, हो सकता है बारिश भी आ जाए।
4: हाँ हाँ ठीक है।
2: मम्मी बाहर से ठंडी हवा आ रही है, अब तो बारिश जरूर आएगी।
1: ओहो, ये तो बेमौसम की बरसात है, अभी तो बरसात आने में देर है।
2: लो मम्मी, आप तो कह रही थी कि बरसात आने में देर है और बारिश होने भी लगी। मम्मी मैं बारिश में जाके नहा लूं?
1: अरे प्लीज ना मम्मी, जाना मानो क्या करता है तू, तंग मत कर। अरे सृष्टि, बाहर से कपड़े उतारेगी नहीं?
2: हाँ मम्मी।
1: आज मौसम को भी पता नहीं क्या हो गया, अच्छी खासी धूप निकली थी, अचानक आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी।
2: मम्मी मैं भी अखबार में देखता हूँ कि आज मौसम विभाग ने मौसम के बारे में क्या लिखा है।
1: अरे मौसम वालों की तो भली कही, जब वो कहते हैं आसमान साफ रहेगा तो बादल छा जाते हैं, जब वो कहते हैं बारिश होगी तो तेज गर्मी और धूप से हम बेहाल हो जाते हैं। अरे सृष्टि बेटा, देखना दरवाजा खोल, कौन है?
2: हाँ जी, मेरा दोस्त बबलू होगा, वो मुझे बारिश में नहाने के लिए बुलाने आया होगा।
4: तेरा अंदाजा हमेशा की तरह आज भी गलत है मानव, ये तो पापा और विवेक भैया हैं।
6: अरे भाई किसका अंदाजा गलत है?
2: पापा, मौसम विभाग का और मेरा।
1: आप लोग तो बिल्कुल ठीक है जी।
6: तो क्या भाई?
1: रुकिए मैं तौलिया लेकर आती हूँ, ये लीजिए।
7: मम्मी बाहर ना इतनी तेज आंधी थी, पहले तो हम एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, पेड़ तो मानो चरमराने लगा, लगता था टूट कर गिर पड़ेगा। फिर हमने सोचा भाग लो, घर ही चलते हैं।
6: अरे अब अपनी मम्मी को कहानी सुनाते रहोगे या पहले एक कप गर्मा गर्म चाय पी लें? क्यों वसुधा, अब चलो, इस तूफान से मौसम कुछ तो ठंडा हुआ है ना।
1: सुनिए जी, दीदी के यहाँ वो सब तैयारियाँ ठीक चल रही है ना? शादी को तो कुछ ही दिन रह गए हैं।
7: पापा अगर शादी वाले दिन भी अचानक ऐसा मौसम हो गया तो?
6: अरे तो क्या, शामियाना वाटर प्रूफ लगाना पड़ेगा और क्या।
7: तब तो शामियाने का बजट और बढ़ जाएगा,
2: फूफा जी की जेब और हल्की हो जाएगी।
6: वैसे कहता तो ठीक है भाई, इस मौसम के मिजाज का हमारे मिजाज पर भी असर पड़ता है, यानी पड़ रहा है।
7: तभी तो हमारा दिल अब चाय और पकोड़े खाने को।
6: विवेक क्या बात, तो मेरे मुंह की बात छीन, मतलब मेरे पेट की बात छीन लिया।
2: तो मम्मी कुछ बनाओ ना गर्मा गर्म।
4: मेरा भी दिल कर रहा है, चलो मैं आपकी मदद करती हूँ।
1: डब्बा और कढ़ाई तो देना।
2: क्या हो रहा है?
4: ये लो मम्मी।
2: चूल्हे पर रखी है कढ़ाई, मम्मी और दीदी को अब नहीं लग रहे हैं गर्मी के चाटे, तभी तो वो बना रही है गर्मा गर्म पराठे।
4: काफिया तो है तेरा एकदम ठीक, पर अंदाजा नहीं है तेरा सटीक।
2: क्यों, क्या पराठे नहीं बन रहे?
5: क्या कढ़ाई में कोई पराठे बनाता है बुद्धू, मैं तो आलू की कचौरियाँ बना रही हूँ।
4: मानव तू जरूर मौसम वैज्ञानिक बनेगा।
7: अरे भाई कौन मौसम वैज्ञानिक बनेगा?
4: मानव।
7: क्यों?
4: क्योंकि इसका अंदाजा मौसम वैज्ञानिकों की तरह अक्सर गलत होता है।
1: मुझे भी ऐसे ही लगता है, चूल्हे पर कढ़ाई रखी है फिर भी कहता है पराठे बना रही हूँ।
7: अरे भाई इसमें मौसम वैज्ञानिकों का क्या दोष, मानव ने सभी बातों का अवलोकन गौर से नहीं किया और निष्कर्ष निकाल लिया तो अंदाजा तो गलत होगा ही ना।
1: ये गलतियाँ ना बाद में निकालना, लो पहले गर्म कचौरियाँ खाओ।
7: हाँ
4: भैया मुझे भी दो।
7: लेना मानव। अच्छा आजा मानव, पापा के साथ बैठ कर खाएंगे। मम्मी सृष्टि आप लोग भी जल्दी बनाकर आ जाओ।
6: अरे मानव खाता क्यों नहीं, एक कचौरी हाथ में लेकर क्या घुमा रहा है?
7: पापा मुझे पूरा यकीन है इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है।
6: हाँ हो सकता है।
2: भैया मैं सोच रहा हूँ कि ये आलू की कचौरी का आकार

0: साफ साफ बता देना, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं।
1: भैया आप तो रहने ही दो, मम्मी अगली बार जब बारिश होगी ना तो आप पराठे बनाना, और वो भी आलू के।
2: बना दूंगी पराठे।
1: तो अगली बारिश कब होगी और कब मुझे पराठे मिलेंगे? भैया बताओ ना अगली बारिश कब होगी?
3: विवेक मानव मजाक मजाक में तुमसे पूछ रहा है कि आने वाले दिनों के मौसम का अंदाजा कैसे लगा?
1: हाँ पापा, ये क्या, हम सभी आने वाले मौसम का हाल जानना चाहते हैं, क्योंकि मौसम का हर समय हमारी हर चीज पर कुछ ना कुछ असर जो होता है।
4: विवेक लगता है तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, सृष्टि भी कुछ गंभीर दिखाई दे रही है।
3: अरे क्यों ना हो वसुधा, मौसम और हमारा हर समय हर पल का वास्ता जो है, अगर आज हमें मौसम का पूर्वानुमान होता तो शायद हम घर से बाहर ही ना जाते, बाहर ना जाते तो भीगते नहीं
1: और भीगते नहीं तो गर्मा गर्म कचौरियाँ और गर्म चाय नहीं मिलती।
5: ये बात भी सही है। देख मारो, तू जानना चाहता है ना तो आज का अखबार उठा और मौसम वाला कॉलम देख, और देख उसमें क्या लिखा है।
1: अच्छा भैया अभी लाता हूँ। भैया इसमें तो कुछ आंकड़े लिखे हैं और एक मानचित्र भी है, और लिखा है कि मौसम में बदलाव नहीं, आंकड़े हैं अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान और अपेक्षित आर्द्रता।
5: मानव मौसम को समझना तथा आने वाले समय के मौसम का पूर्वानुमान लगाना आज एक पूर्ण विज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में मीटरोलॉजी यानी मौसम विज्ञान कहते हैं, और उससे जुड़े वैज्ञानिकों को मीटरोलॉजिस्ट यानी मौसम विज्ञानी।
1: अच्छा भैया एक बात बताओ, जब मौसम विभाग नहीं था और मौसम वैज्ञानिक भी नहीं थे तो लोग मौसम का अंदाजा कैसे लगाते थे?
3: गुड क्वेश्चन।
4: अरे मानव हमारे यहाँ कितनी ऐसी कहावतें मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जो मौसम से संबंधित हैं। हमारी दादी उसी से अंदाजा लगाती थी।
1: हाँ मम्मी आपने एक दिन बताया था, जब चिड़िया रेत में नहाए या चींटियां अपने अंडों को लेकर बाहर निकलने लगे तो समझो बारिश का मौसम निकट है।
5: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, बिल्कुल ठीक। हमारे पूर्वज आकाश के रंग, हवा की दिशा, आकाश में बादलों की स्थिति और रंग देखकर मौसम की भविष्यवाणी करते थे। इस ज्ञान को लोगों ने कहावतों और मुहावरों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया।
3: जैसे मैंने तुम तक पहुंचाया।
1: तो क्या वो अनुमान ठीक होते थे?
5: कभी सही तो कभी गलत।
1: ऐसा क्यों?
5: तुम जानते ही हो मानव कि हमारे आसपास वायुमंडल है, उसमें जो बदलाव होते हैं वही हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं।
1: और मैं ये भी जानती हूँ कि मौसम संबंधी प्रक्रिया केवल स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में ही होती है। दीदी तब तो हमें स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ही रहना चाहिए, वहाँ मौसम हमें कभी परेशान नहीं करेगा। अरे बुद्धू तब सांस कैसे लेगा तू, वहाँ इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी?
5: हमारा वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है।
1: पर भैया मैंने तो सुना है कि धरती का वायुमंडल कई चादरों का बना हुआ है और हर चादर अलग अलग है, जैसे मेरे पलंग की चादर लाल तो दीदी की नीली।
5: हाँ मानो कुछ ऐसे ही समझो, पर हर चादर के गुण अलग अलग होते हैं।
1: ऐसा क्यों भैया?
5: मानव इसके लिए हमें गैसों के कुछ विशेष गुणों को समझना पड़ेगा।
1: जैसे गैसें दबाव डालती हैं, गर्म होकर फैलती हैं तो उनका घनत्व कम हो जाता है और वो ऊपर उठती हैं।
5: बिल्कुल ठीक है सृष्टि, ठीक उसी प्रकार वायुमंडल की निचली परत जो धरती के संपर्क में आती है वो गर्म हो जाती है और उसके अणु एक दूसरे को धकेलते हैं, इससे वो फैल जाते हैं और तब उनका घनत्व कम हो जाता है और तब वो परतें हल्की हो जाती हैं और तब उनके द्वारा डाले जाने वाला दबाव भी कम हो जाता है।
1: दबाव कम होने से क्या होगा? तब तो आसपास की ठंडी हवा गर्म वायु को धकेलती होगी।
5: बिल्कुल ठीक सोचा सृष्टि, और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है
1: और उसके स्थान पर ठंडी हवा आ जाती होगी। दबाव कम तो ठंडी हवा यानी सुहाना मौसम।
5: अरे वाह मानव, ऐसा ही कुछ कुछ वैज्ञानिक भी करते हैं, वो पूर्वानुमान कई कारकों के आधार पर लगाते हैं।
1: और वो कारक हैं तापमान, हवा का दाब, दिशा तथा आर्द्रता यानी नमी। पर भैया ये नमी कहाँ से आती है?
5: अरे मानव धरती के तिहाई भाग में पानी ही तो है, सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर वायुमंडल में पहुँचता है।
1: अच्छा अब मैं समझ गया।
5: और मानव जानते हो आज हमारे पास इन सभी कारकों को नापने के उपकरण हैं, जैसे थर्मोमीटर, एरोमीटर, अनीमोमीटर, यानी आंकड़े जितने सही और सटीक होंगे हमारे अनुमान उतने ही सही होंगे।
6: तो क्या हमारे मौसम वैज्ञानिक सही और सटीक आंकड़े

0: इकट्ठे नहीं करते तो उनके अनुमान ठीक नहीं होते?
1: मानव, इस सवाल का जवाब देना तो मुश्किल है।
2: अरे भाई, कौन से सवाल का जवाब मुश्किल है,
1: आप ही बता दो।
0: अरे पापा, याद आया, आपके मित्र है ना डॉक्टर कार।
1: हाँ?
0: वो भी तो मौसम वैज्ञानिक है।
3: वही मौसम भवन वाले ना दीदी?
0: हाँ हाँ, वही मानव। अब पापा, आप उनको फोन करो ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं।
1: हाँ हाँ पापा, मैंने सुना है अब मौसम विभाग में एक नया सुपर कंप्यूटर आया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ।
2: तुम लोग जाना चाहते हो?
0: हाँ।
2: अरे तो मैं अभी फोन करके उससे कल शाम के लिए तुम सबके मिलने का समय फिक्स कर देता हूँ।

0: देख ये रहा मौसम केंद्र, और वो देख डॉक्टर कार हमारा इंतजार भी कर रहे हैं।
1: अरे आ जाओ बच्चों, कैसे हो विवेक, कैसे हो मानव, कैसी हो सृष्टि?
2: नमस्ते अंकल।
1: नमस्ते नमस्ते, आओ
3: दीदी। ये मौसम भवन है?
1: हाँ भाई, यही मौसम भवन है और ये हमारा दफ्तर है। आओ आओ भीतर चलें।
0: आई, आई।
3: अरे दीदी वो देखो वहाँ वो दो लोग ना गुब्बारे उड़ा रहे हैं। कितना बड़ा गुब्बारा है, कितना मजा आ रहा होगा ना इनको।
1: अरे भाई मानव, ये मजे के लिए नहीं है, ये तो उसे ऊपर के वायुमंडल का हालचाल जानने के लिए उड़ा रहे हैं।
3: ऊपर के वातावरण का हालचाल?
1: हाँ मानव, ये मौसम केंद्र है, हम यहाँ वायुमंडल से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करते हैं।
0: अंकल इन गुब्बारों में क्या है?
1: विवेक इनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, जिनसे हम ऊपरी वायुमंडल का तापमान, दबाव, हवा की दिशा और नमी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते हैं। हमारे देश में मौसम संबंधी आंकड़े 550 से अधिक केंद्रों पर इकट्ठा किए जाते हैं।
0: अच्छा,
3: तो क्या हर केंद्र से गुब्बारे भी छोड़े जाते हैं?
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा केवल 36 केंद्रों से दिन में दो बार किया जाता है। विश्व के अन्य देशों में भी ऐसे केंद्र हैं, जिनसे हम आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं।
3: अंकल उस बाग में जो यंत्र लगा है वो रेन गॉज यानी वर्षा मापक यंत्र है ना?
1: बिल्कुल सही सृष्टि, और ये यहाँ बैरोमीटर है वायु के दाब के लिए, और ये हाइग्रोमीटर हवा में नमी के लिए,
3: और ये है थर्मामीटर तापमान नापने के लिए।
0: अंकल एनीमोमीटर भी तो होगा हवा की गति नापने के लिए?
1: हाँ हाँ विवेक, वो देखो वो रहा, और ये जो जोकर की टोपी जैसा ये है ना, ये वायु दिशा सूचक है।
3: तो आप यहाँ केवल आंकड़े इकट्ठा करते हैं?
1: हाँ मानव, हमारे पास मौसम संबंधी पिछले 100 वर्षों से अधिक के आंकड़े हैं।
3: पर अंकल आप इन आंकड़ों का करते क्या हो?
1: अरे मानव, यही तो हमारा कच्चा माल है मौसम का पूर्वानुमान लगाने का।
3: कच्चा माल?
1: बिल्कुल भाई, मुझे आपके पिताजी ने बताया था कि आप लोग कल बेमौसम की बरसात से परेशान हो गए थे, और आज मौसम केंद्र में ये जानने आए हैं कि आने वाले मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है।
4: हाँ अंकल।
1: तो चलो फिर भीतर मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर प्रशांत माली भी आपसे मिलने को उत्सुक हैं।
4: चलो चलो
1: चलो, आओ बच्चों आओ। ये है डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर प्रशांत ये मेरे मित्र सूर्य प्रकाश जी के बच्चे हैं। ये है विवेक, ये सृष्टि, और ये मानव।
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते नमस्ते भाई। भाई मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं।
1: वैसे बच्चों एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मौसम के पूर्वानुमान लगाने का तरीका आज भी लगभग वैसा ही है जैसा कि पहले था।
5: हाँ, आज केवल अंतर इतना है कि हमारे पास आंकड़े एकत्र करने के सही उपकरण व तकनीक है, जिससे पूर्वानुमान अधिक सटीक प्राप्त होते हैं।
1: पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना आज भी लगभग टेढ़ी खीर है, क्योंकि मौसम को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले सभी कारक क्या हैं और वो आपस में कैसे और क्या क्रियाएं और अभिक्रियाएं करते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी अभी हमारे पास नहीं।
0: तो अंकल जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जाएगी और हमारी तकनीकें सुधरती जाएंगी, हमारे पूर्वानुमान सटीक होते जाएंगे, है ना?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक। जैसे प्राचीन काल से मध्यकाल तक मौसम के पूर्वानुमान के लिए लोग संतों और महात्माओं से पूछते थे, क्योंकि मौसम का नियंत्रण व उसमें आपस में होने वाली क्रियाओं से वे अनजान थे।
3: और आज वही कार्य मौसम वैज्ञानिक करते हैं।
1: हाँ मानव, परंतु आज हम मौसम का पूर्वानुमान वैज्ञानिक तरीके से लगाते हैं, हम भौतिकी व रसायन विज्ञान के कई सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं।
5: और बच्चों मौसम को समझने के लिए भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करने वाले पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे एडमंड हेली।
0: अंकल वही हेली जिन्होंने उस धूमकेतु की खोज की थी जो हर 86 वर्षों में पृथ्वी के निकट आता है?
5: हाँ विवेक, वही हेली। और पता है वो न्यूटन के भी अच्छे मित्र थे।
1: भाई बच्चों जैसे जैसे वायुमंडल के बारे में हमारी जानकारी बढ़ रही है, हमारे तरीकों में भी बदलाव आता जा रहा है।
0: तभी अंकल आज हम मौसम के आंकड़े न केवल पृथ्वी की सतह से बल्कि वायुमंडल के भिन्न भिन्न स्तरों से भी लेते हैं।
5: और आंकड़ों के लिए हम समुद्री जहाजों, वायुयानों और रॉकेटों का भी उपयोग करते हैं।
3: लेकिन अंकल पृथ्वी का वायुमंडल तो एक है, वो तो देश की राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानता। मुझे लगता है मौसम का सही पूर्वानुमान हम तभी लगा सकते हैं जब हमें समुचित वायुमंडल के आंकड़े प्राप्त हों।
1: बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। असल में हमारी ये समस्या आज दूर संवेदी तकनीक यानी रिमोट सेंसिंग द्वारा हल हो गई है। आज कई उपग्रह जिनमें पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह और जियोस्टेशनरी यानी भूस्थिर उपग्रह शामिल हैं, उनसे हमें पृथ्वी के एक विशाल क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त होते हैं।
0: अच्छा
3: अंकल, आपकी टेबल पे ये इतने सारे मानचित्र, ये क्या है? हाँ अंकल, ऐसे मानचित्र तो मौसम का हाल बताने वाले कार्यक्रम में अक्सर दिखाई देते हैं।
1: मानव और सृष्टि, ये सिनॉप्टिक मानचित्र हैं। दिन के एक निश्चित समय में विभिन्न केंद्रों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और वो एक विशेष केंद्र को भेज दिए जाते हैं।
5: फिर वहाँ पर उनको मानचित्र पर दर्शाया जाता है। भारत में 550 केंद्रों पर आंकड़े एकत्र होते हैं।
0: अच्छा, तब तो अंकल जैसे ही एक विशेष समय पर लिए गए आंकड़ों को मानचित्र पर दर्शाया जाता होगा, तुरंत हमें पूरे देश के मौसम का पता चल जाता होगा।
1: बिल्कुल। इतना ही नहीं, इन आंकड़ों के गहन अवलोकन तथा विश्लेषण से पिछले आंकड़ों व अनुभवों के आधार पर आने वाले मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। इन आंकड़ों को मानचित्र में मानक संकेतों द्वारा दिखाया जाता है।
3: ये मानक कौन निर्धारित करता है?
5: ये मानक निर्धारित करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही संगठन आंकड़े एकत्र करने के उपकरणों व तरीकों आदि के मानक निर्धारित करता है।
0: अच्छा अंकल, जब इन सिनॉप्टिक मानचित्रों का विश्लेषण किया जाता है तो उससे हमें पूरे वायुमंडल का हाल तो मिल जाता है, पर आने वाले मौसम का पूर्वानुमान तो आकलन करने वाले वैज्ञानिकों के पूर्व अनुभव और उनकी कुशलता पर ही निर्भर करता होगा। उन्हें तो बहुत सारे सांख्यिकीय सूत्रों और समीकरणों को हल करना पड़ता होगा।
3: भैया, तब तो वो व्यक्ति गणित में बहुत होशियार होगा, है ना?
1: भाई, ये आंकड़े इतने अधिक होते हैं कि कई लोग लगातार दिन रात काम करें तो भी इनके सही नतीजे निकाल पाना संभव नहीं होगा।
3: तभी आपको सुपर कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है।
1: तुमने बिल्कुल सही कहा सृष्टि।
0: अंकल, क्या आज भी मौसम का पूर्वानुमान लगाना वैज्ञानिकों के कौशल और अनुभव पर ही निर्भर करता है?
5: नहीं भाई, आज तो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के दो मुख्य तरीके हैं।
3: अंकल, पहला तो शायद वही, यानी जलवायु के कारकों, पिछले अनुभवों पर आधारित अध्ययन और उसका सांख्यिकीय विश्लेषण। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल यानी सांख्यिकीय मॉडलों द्वारा किया जाता है, है ना?
1: शाबाश सृष्टि। और दूसरा है वायुमंडल के सामान्य संचरण मॉडल्स।
3: ये क्या है अंकल?
1: भाई देखो, हमारा ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और ये भौतिकी के सभी नियमों का पालन करता है, जैसे गति के नियम, ऊर्जा व द्रव्य के संरक्षण आदि के सिद्धांत।
0: अंकल, कहीं आप गणितीय मॉडल की बात तो नहीं कर रहे जो वायुमंडल में घट रही सभी प्राकृतिक घटनाओं को आधार मानकर तैयार किए जाते हैं?
1: बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक समझे विवेक। इसे अंग्रेजी में न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन विधि कहा जाता है।
3: अच्छा।
5: या यूं कहें कि ये मॉडल मुख्यतः वायुमंडल के व्यवहार से संबंधित नियमों और अभिक्रियाओं का एक समूह है।
1: देखो भाई, इन सभी सिद्धांतों और उनकी आपसी परस्पर क्रियाओं व संबंधों को गणितीय सूत्रों और समीकरणों में बदल दिया जाता है। फिर विभिन्न कारकों का मान रखकर उनको सुलझाया जाता है, जैसे पहले आंकड़े क्या थे और अभी के क्या हैं और आने वाले समय में क्या होंगे आदि। इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आने वाले समय में वायुमंडल कैसे आचरण करेगा।
3: तब तो मेरे पास भी अगर सभी आंकड़े हो तो इस मॉडल के आधार पर और सुपर कंप्यूटर की सहायता से मैं भी मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता हूँ।
1: मानव, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वायुमंडल एक गतिशील इकाई है और फिर वायुमंडल को प्रभावित करने वाले सभी कारकों और उनकी आपसी प्रक्रिया का हमें पूरी तरह ज्ञान भी नहीं है।
5: दूसरे, हमारे पूर्वानुमान लगाने के सभी मॉडल कई मान्यताओं पर आधारित हैं, जैसे किसी कारक और उसके प्रभाव की गणना करके जो गुणांक निकला है वो सार्थक होगा, परंतु वायुमंडल गतिशील इकाई है, उसमें कब क्या किस कारण से बदलाव आ जाए क्या पता।
0: अंकल, तब तो ये कार्य बहुत कठिन होता होगा।
5: हाँ विवेक, परंतु इन मॉडलों से लघु अवधि के यानी आने वाले 48 घंटों के मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है वो लगभग सही होता है।
3: यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा और वायुमंडल कैसे आचरण करेगा उसी के अनुपात में आने वाले पूर्वानुमान से ठीक ना होने की संभावना बढ़ती जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि। आज मौसम वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक जटिल गतिशील इकाई वाले वायुमंडल को सही रूप में कैसे समझा जाए।
5: और तभी तो इन मॉडलों के आधार पर प्राप्त अगले 48 घंटों से अधिक के पूर्व सूचना को हम अनुमान कहते हैं।
0: अच्छा, तब तो अंकल मौसम की मध्यम अवधि जिसमें 3 हफ्ते की सूचना दी जाती है उसका पूर्वानुमान सटीकता से लगाना तो अब भी कठिन काम है।
1: बिल्कुल सही कहा विवेक, लघु अवधि के पूर्वानुमान विस्तार से बनाए जाते हैं, वैसे मध्यम अवधि में पूर्वानुमान नहीं बताए जाते। ये काम आज भी अंधेरी रात में काले कौवे को पकड़ने के समान है।
3: फिर अंकल हम ये सारी मेहनत क्यों करते हैं?
1: ये भी सही सवाल है मानव भाई, ये पूर्वानुमान सही भी तो उतरते हैं, कभी कभी अनुमान गलत हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया ही ना जाए।
5: आज पूरे विश्व में लगभग सभी देशों के मौसम वैज्ञानिक लघु व मध्यम अवधि के पूर्वानुमान लगाने के अलावा आगामी वर्ष में होने वाली वर्षा, गर्मी और हिमपात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। ये आने वाले मौसम का दीर्घकालीन अनुमान लगाना होता है, जैसे हम आने वाले मानसून का पूर्वानुमान लगाते हैं।
3: अच्छा। अंकल हमारे देश में तो खेती मानसून पर ही निर्भर करती है, अगर उसका पूर्वानुमान लगा लिया जाए तो किसान फसलों को लगाने की योजना पहले से ही तैयार कर सकते हैं।
0: अंकल हमारे देश में इस दीर्घ अवधि के मौसम का पूर्वानुमान मतलब कि आने वाले मानसून की भविष्यवाणी की जाती है।
1: बिल्कुल सही विवेक, सन 1986 से हर वर्ष मानसून का दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाया जाता है और खुशी की बात यह है कि अधिकतर ये परिणाम खरे उतरते हैं। इसके लिए हम आज एक 16 पैरामीटरों पर आधारित एक नए मॉडल का उपयोग कर रहे हैं।
5: अच्छा। और इस मॉडल के अनुसार मानसून के पूर्वानुमान लगभग ठीक ही साबित हुए हैं।
0: अच्छा
3: अंकल आपका काम सचमुच बहुत कठिन है, मैं ना केवल हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व के मौसम वैज्ञानिकों को सलाम करती हूँ जो दिन रात मेहनत करके हमें आने वाले मौसम के बारे में जानकारी देते हैं।
0: हाँ सृष्टि, सोचो ये मौसम की जानकारी हमारे देश के तटीय क्षेत्रों के लिए कितनी आवश्यक है।
3: तो क्या आने वाले समुद्री तूफान या चक्रवात की जानकारी भी हमारा मौसम विभाग ही देता है?
1: बिल्कुल मानव बेटा,
3: तब तो मैं भी अपने सभी वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ।
2: और मैं भी।
1: वाह क्या बात है।
0: रसोई की खिड़की से कितनी अच्छी सुगंध आ रही है।
3: ये तो इमली की महक है। और हाँ कल रात को तो मम्मी ने चावल और उड़द की दाल भिगोई थी, तब तो जरूर आज सांबर और डोसा बन रहा है।
6: हाँ भाई डोसा ही बन रहा है।
0: देख मानव आज तेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला।
3: आज इसका अनुमान बिल्कुल ठीक इसलिए रहा क्योंकि इसने अच्छी तरह सारी जानकारियों को तोला और परखा।
7: अरे भाई किसका अनुमान सही है? मेरा पूर्वानुमान है कि तुम सब के सब भूखे हो।
3: आपको कैसे पता?
6: ये तो साफ साफ तुम्हारे चेहरों पर लिखा है।
3: मम्मी तो क्या आप भी चेहरे पढ़कर अनुमान लगा सकती हो?
6: हाँ बच्चों मौसम का अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकती पर तुम्हारे चेहरे देखकर तुम्हारी भूख का अंदाजा जरूर लगा सकती हूँ।
8: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम की भविष्यवाणी।
9: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
3: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: गगन खोखरी फतेह।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रुपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी

0: टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए nikshay.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
2: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
1: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
2: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
1: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
2: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
1: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, RJ बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: महामारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महामारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
1: यदि महामारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
0: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र, अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
1: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरक्षा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है.
0: So, where are you? The world is here at Sharda University.
2: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
6: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
5: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
6: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
5: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
6: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
5: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
6: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
5: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
7: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
8: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
7: So, where are you? The world is here at Sharda University.
9: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
6: Let's go crazy.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: माँ गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का पद संसार का सर्वोच्च और आदर का पद है। गुरु, आचार्य, उस्ताद और टीचर, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इस जिंदगी में जिंदगी हमें हर घड़ी हर पल बहुत कुछ सिखाती है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए फिर जिंदगी की हर परिस्थिति को गुरु मानते हुए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University. Film making is a creative field. And if you think creative, तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो शारदा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत

सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: तुम कर क्या रही हो तारा?
2: तारा लड़ रही है अप्पा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह,

0: मच्छरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
2: 2018 में यहाँ पे JEE के 22 केसेस मिले थे जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
3: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफ़ी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पे मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पे हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
2: तो आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
4: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
5: उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
2: कोविड में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके, JEE रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
3: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEE केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। ये
2: हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
4: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी, जानती हो ना अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है, याद रखें पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
3: कल नहीं अभी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.